मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। शुभ प्रभात।

0: हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20

0: चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशगान से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रीति सागर के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: मीराबाई की इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत वक्रत्व कला, इस विषय पर डॉक्टर जेवी सिंह के विचार।
1: वर्तमान युग में वाणी की शक्ति जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। जिह्वा अस्त्रों का अस्त्र है। दुनिया के सभी अस्त्र शस्त्र संतुलित जीव के सामने अंततो गत्वा घुटने टेक देते हैं। जिह्वा का प्रहार अमोघ और शब्दों की महिमा अपार है। जिह्वा से लोगों के भाग्य बने हैं और बिगड़े हैं। जिह्वा एक दुधारी तलवार है। विवेकहीन वक्ता बिना सोचे समझे जिह्वा रूपी कमान से तीर छोड़ता चला जाता है, किंतु उसके दुष्परिणाम उसे ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, अपने मुंह और बटुए को सावधानी से खोलिए। वाग्मिता में सबसे बड़ी कला है कला को छिपाना। पांडित्य दर्प से प्रेरित वक्ता कभी लोकप्रिय वक्ता नहीं हो सकता। सद्यास्फूर्त भाषण सदा प्रभावकारी होता है। लिखित भाषण एक सूखे फूल की तरह होता है, रंगहीन, सुगंधहीन और लावणहीन। हाँ, बोलने के पहले विषय वस्तु का एक व्यवस्थित क्रम अवश्य बना लेना चाहिए। निस्संदेह आदि मध्य और अंत की क्रमिक व्यवस्था से युक्त भाषण अच्छा भाषण होता है। मंच से बोलने वाले वक्ता को स्थान, प्रसंग और श्रोता का सदा ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ एक बारगी बोल डालने के प्रलोभन से वक्ता को सदा बचना चाहिए। वक्तृत्व में विचारों और भावों के साथ भाषा का भी उतना ही महत्व है। भाषा सरल, सुबोध और सटीक होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त किंतु सारगर्भित होने चाहिए। संक्षिप्तता अभिव्यक्ति की आत्मा होती है। अधिसंख्य वक्ता जिनके चिंतन में गहराई नहीं होती वे वाक्यों की लंबाई से उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, किंतु ऐसे लंबे वाक्य भले ही वक्ता को आनंद प्रदान करते हों श्रोता के लिए यंत्रणा बन जाते हैं। विपुल शब्दों में किंचित कहने की अपेक्षा किंचित शब्दों में विपुल कहना अधिक वर्ण्य है। पहाड़ खोदकर चूहा निकालना वक्तृत्व कला नहीं है। भाषा और भाव ऐसे हों जो हृदय से निकले हों और हृदय को छू जाएं। शैली भाषण कला का प्राण है। भाषण में नाटक की सी गतिशीलता होनी चाहिए तथा स्वर में उतार चढ़ाव। वास्तव में वक्तृत्व कला में प्रस्तुतिकरण की महत्ता पर जितना बल दिया जाए थोड़ा है। कहते हैं एथेंस निवासी डेमास्थनीस से कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी वाक्पटुता का रहस्य क्या है। डेमास्थनीस अपने समय का अग्रणी वक्ता था। उसने छूटते ही कहा, निवेदन विधि। लोगों ने पुनः पूछा दूसरी बात, उसने फिर कहा निवेदन विधि, और फिर उसके बाद फिर उत्तर मिला निवेदन विधि। भाषण में व्यक्तिगत हमला या दोषारोपण भाषण को सतही बना देता है। सच्ची वाग्मिता में उग्रता नहीं होती। जिसके तर्क लचर होते हैं वही चिल्लाता और हाथ पैर पटकता है। एक कुशल वक्ता अपनी भाव भंगिमाओं और अंग विक्षेप पर नियंत्रण रखता है। वह विषय पर दृढ़ विश्वास से बोलता है तथा अपनी लक्षणा और व्यंजना शक्ति के प्रयोग द्वारा श्रोता को स्वेच्छा से हंसाता और रुलाता है। यथास्थान हास्य का पुट भाषण को सरस और रोचक बना देता है। भाषण की समाप्ति की शब्दावली सशक्त होनी चाहिए। समापन के वाक्यों का विषय प्रवेश के वाक्यों से कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अंत भला सोई भला। निस्संदेह वक्तृत्व कला अनेक ऐसे गुणों का सम्मिश्रण है जिनका विकास सतत अभ्यास द्वारा ही किया जा सकता है। प्रारंभ में भले ही असफलता और निराशा हाथ लगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और अभ्यास के सामने सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भाषण की समाप्ति पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तुरंत अपने आसन को ग्रहण कर लेना कथमप समीचीन नहीं है, बल्कि एक कुशल अभिनेता के समान तालियों की गड़गड़ाहट समाप्त होने की प्रतीक्षा में अभिवादन की मुद्रा के साथ खड़े रहना चाहिए। इससे वक्ता और श्रोता के बीच अंतरंगता का प्रादुर्भाव होता है।
0: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वक्रत्व कला, विषय पर डॉक्टर जेवी सिंह के विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सामयिक चर्चा। विषय है पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, पशु अधिकतर कभी न कभी मिट्टी या दूसरे बिना उपयोग की वस्तुएं खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े, कागज, चमड़े के जूते, लकड़ी, चलते चलते रास्ते में दीवारों को चाटना, गंदी नालियों में से गंदा पानी पीना, एक पशु द्वारा दूसरे पशु के शरीर को चाटना या अपना ही मूत्र पीना। पशुओं में ये लक्षण पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। पशुओं के ये लक्षण आगे चलकर आदत में बदल जाते हैं। पशुओं में पनपी आदतों को छुड़ाने के लिए पशुपालक तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। ये सभी लक्षण पशु में जब ही उत्पन्न होते हैं, जबकि पशु के शरीर में किसी कारणवश कुछ आवश्यक खनिज तत्वों की कमी हो जाती है और यह कमी पूरा करने के लिए पशु मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। पशु में मिट्टी खाने का मुख्य कारण पेट में गोल कृमियों का पैदा होना है और यह कृमि पशुओं के शरीर में खनिज तत्वों की कमी पैदा कर देते हैं। पशुओं को जो चारा दाना खिलाते हैं उसमें खनिज तत्वों की कमी होना या पशुओं को संतुलित आहार न मिलने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। जो पशु गर्भधारण किए हुए या दूध देने वाले पशुओं में सामान्यतः कमी हो जाती है, जबकि ऐसे पशुओं को अधिक मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। कभी कभी हरे चारे वाली फसलों को समय पर काटकर पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, जिससे पशुओं में खनिज तत्व और दूसरे पौष्टिक तत्वों की कमी होने लगती है। जो पशु गंदे तालाबों का पानी पीते हैं, जिससे उनके पेट में कई प्रकार के कृमि और अंडे चले जाते हैं और ये कृमि पेट में जाकर तत्वों की कमी कर देते हैं। पशुओं में खनिज तत्वों की कमी न हो, इसके लिए पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवाएं देते रहना चाहिए। सबसे पहले पशुओं के गोबर की जांच करवानी चाहिए, उसके बाद ही कृमिनाशक दवाएं पिलानी चाहिए। कृमिनाशक दवाएं अधिकतर पशु के वजन के अनुसार दी जाती हैं, इसलिए पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पानी, दही या लस्सी में घोल बनाकर पिलाएं। पशुओं को हरे चारे और दाने के साथ साथ 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 20 से 25 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। पशुओं को हमेशा मिश्रित हरा चारा ही खिलाएं, इससे पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार मिलेगा। जहां पर चारे वाली फसलें उगा रहे हैं, वहां पर संतुलित खादों का प्रयोग करना चाहिए। बीज की बोनी से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं और जो भी तत्व भूमि में कम हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से भूमि में तत्वों का संतुलन बना रहेगा और चारे की पैदावार अच्छी मिलेगी। प्राप्त चारे में सभी तत्व उपलब्ध होंगे और पशुओं के शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं होने पाएगी। जहां तक संभव हो सके पशुओं को साफ, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशुशाला को कृमि रहित और साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पशुओं के गोबर और मूत्र की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। पशुशाला हवादार स्वच्छ होनी चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए नीम की पत्ती जलाकर शाम के समय धुआं कर देना चाहिए। पशुशाला के आसपास कीटनाशक चूर्ण समय समय पर छिड़काव करते रहने चाहिए, जिससे पशु में मिट्टी खाने की समस्या नहीं आएगी। पशु स्वस्थ रहेंगे, रोग रहित रहेंगे, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। पहले सुनिए ये सूचना। राज्य सरकार ने अगस्त और सितंबर 2026 का राशन एक मुश्त देने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। दोनों माह का खाद्यान्न 15 अगस्त तक राशन दुकानों तक पहुंचाया जाएगा और 31 अगस्त तक पात्र हितग्राहियों को वितरण पूरा होगा। दो माह का राशन लेने के लिए हितग्राहियों को POS मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक या OTP सत्यापन कराना होगा। अंत्योदय परिवार के 35-35 किलो खाद्यान्न व 1-1 किलो नमक तथा प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5-5 किलो खाद्यान्न मिलेगा।
2: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
3: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
2: प्लास्टिक पॉलिथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलिथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलिथीन दूर हटाना है।
4: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
5: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
6: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
5: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
6: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
5: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
6: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
5: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
7: ए भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही।
0: अभी आप सुन रहे थे

0: मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। ये आशा है कि RBI प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वसुंधरा क्रम के अंतर्गत वार्ता पर्यावरण असंतुलन कारण

0: निवारक, वार्ताकार होंगी प्रमिला तिवारी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं प्रातः 7:30 बजे से। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगी स्वाति पाराशर। प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:30 बजे आज कलाकार होंगी अश्विनी मोरघोड़े। आप सुनेंगे इनका गाया राग ललित। प्रातः 10 बजे जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दिन में 11 बजे से इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12 बजे आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे सावन और त्योहारों की आहट। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, स्तनपान महत्व एवं सावधानियां। इस विषय पर डॉक्टर यशोधरा गौर से वंदना शर्मा की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। साथ ही चर्चा होगी घर की सीलन से कैसे बचें, और साथ ही चर्चा होगी स्मृति स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलई पर। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा। कलाकार होंगे जगदीश प्रसाद व साथी। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की ही प्रस्तुति होगा। कलाकार होंगी नीलिमा शर्मा। आप सुनेंगे इनसे भजन। दिन में 2:30 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे चित्रपट संगीत का। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। इस सभा के सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही प्रसारित होंगे, जिनमें शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा। चर्चा के विषय होंगे AI और युवाओं का भविष्य, जोश में होश न खोएं, और साथ ही चर्चा होगी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। इस विषय पर शाम 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर आप हमारे केंद्र से सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। चर्चा का विषय होगा आयुष्मान भारत योजना और नल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। साथ ही आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सलाह भी आपको सुनवाई जाएगी। साथ ही आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता, अच्छे बीजों की पहचान और प्राप्ति के लिए स्रोतों, डॉक्टर रुचि असाती से सोहन सिंह जी की बातचीत आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 9:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 10:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है प्रादेशिक समाचार। अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल में चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन के लिए अब तक तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने जा रही है। बीते 2.5 वर्ष में राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और नियमों के कारण मध्य प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में उद्योगपति और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी दिए।
1: हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर का मध्यप्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के मिलाकर जो जोन डिक्लेयर किया है, ये वाकई पूरे देश का अद्भुत प्रयोग है। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को समृद्ध करेगी, जहां निवेशकों के लिए व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे काम होगा, हमारे राज्य के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को आगे बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी रहेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इस प्रकार के टेलीकॉम सेक्टर में विदेश की तरफ देखते हैं, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है।
0: वहीं इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटलाइजेशन में नई क्रांति देखने को मिली है। पहले भारत 2G पर निर्भर रहता था, आज हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 5000 किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्टेडियम, खेल सुविधाओं तथा खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन सहभागिता से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों के लिए पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान भी किया। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में कल देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिनभर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भ्रमण भी किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने उनके लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किशोर नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी ने प्रस्तुति दी। वहीं पार्श्व गायक विनोद राठौर को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में

भोपाल प्रतिष्ठित संगीत संध्या ये शाम मस्तानी का आयोजन किया गया, जिसमें सुविख्यात संगीत निर्देशक एवं गायक अनु मलिक उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संचालक संस्कृति एनपी नामदेव एवं उप संचालक डॉ पूजा शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अनु मलिक ने कहा कि भोपाल एक तहजीब का शहर है और यहाँ आकर मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति भी इस अवसर पर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर योजना का वास्तविक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ यादव की मंशा और लगातार प्रयासों के अनुरूप लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में कल अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कल मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि नागरिकों को लोक सेवाओं का प्रदाय नियत समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय कार्यों के निष्पादन को प्रभावी रूप से किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों से विमर्श किया। अब रुख करते हैं मौसम का। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है। पर्याप्त बारिश न होने से अब तक प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक और वाद विवाद तथा शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री का 100% उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि POS मशीन में अगस्त एवं सितंबर की राशन राशि को वितरित करते समय 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही बालिकाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत 12वीं पास और योग्य अभ्यर्थी 15 अगस्त तक महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकती हैं। नर्मदापुरम के HRC कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की 250 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। इंदौर के राला मंडल स्थित केंद्र में 7 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 900 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सतना के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड शिविर आज कृपालपुर के संजीवनी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। और नीमच के मनासा रोड डाक बंगले से PG कॉलेज तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान कल चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से, देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वसुंधरा क्रम के अंतर्गत सुश्री प्रमिला तिवारी की वार्ता, पर्यावरण असंतुलन कारण और निवारण।
1: पर्यावरण असंतुलन के मायने हैं कि जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं उसे प्रदूषित कर रहे हैं, उसे कैसे बचाएं और उसके बचाने की हमारी जिम्मेदारी है क्या, उसे निभाया कैसे जाए, आखिर वातावरण में इतना असंतुलन आया कैसे। प्रकृति ने तो हमें हर चीज़ साफ सुथरी दी है, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी। पहले हवा की बात करें। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें ये एहसास भी नहीं है कि वे खुद को नहीं बल्कि आसपास के वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा नुकसान साथ में बैठे व्यक्ति को होता है। आप मुंबई दिल्ली का हाल देख लें, साफ हवा में सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, त्वचा के तमाम तरह के नए रोग पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूषित हवा में सांस लेना हमारी मजबूरी है। आमतौर पर मानव गतिविधियों के कारण ही पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। जब पर्यावरण में अवांछित पदार्थ ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं वही प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आमतौर पर प्रदूषण के जो प्रमुख प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण आदि। हम वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को भी अगर शामिल कर लें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण पटाखे हैं। हम बम, लड़ियां, अनार जैसे पटाखे लाकर भी जलाते हैं और तालियां बजाकर खुशी जाहिर करते हैं, पर वातावरण में उससे कितना धुआं छोड़ा जा रहा है वो भी विषैला, ये हमें ध्यान ही नहीं है। बुजुर्ग खांस रहे हैं, कुत्ते डरकर छुपे हैं, बीमार कान पर तकिया रखे हैं और हम शान से वातावरण दूषित करने में व्यस्त हैं। आप पाएंगे कि जहाँ पटाखे चलाए जा रहे हैं वहाँ आसपास के पेड़ झुलस जाते हैं। वो पेड़ जिन्हें बड़े जतन से लगाया गया था कि वो हमें ऑक्सीजन देंगे, हमने उन्हें ही घायल कर दिया और अब पर्यावरण में असंतुलन नहीं होगा तो होगा क्या। सभ्यता विकास और औद्योगिक क्रांति के साथ प्रदूषण बढ़ाने के लिए हमारे पास नए विकल्प भी आ गए, उनमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल हैं। आज के युग में प्लास्टिक एक बड़ा खतरा है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। प्लास्टिक की बोतलें, दूध की थैलियाँ, घी, आटा, मसाले, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ के साथ प्लास्टिक हमारे घरों में घुस चुका है। हर चीज़ की पैकेजिंग प्लास्टिक में हो रही है। सरकार ने उस पर कई नियम भी बनाए पर हम उन नियमों को ताक पर रख खाली हाथ हिलाते बाजार जाते हैं और कई प्लास्टिक बैग्स के साथ घर में प्रवेश करते हैं। अब तो पत्तल दोने भी प्लास्टिक के बन रहे हैं। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं। हम स्वयं ही अपने आसपास के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो रिसाइकिलिंग की सुविधा है, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। पर हम भूल जाते हैं कि कुल 10% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी 90% या तो लोग नदियों में, पहाड़ों पर कूड़ेदानों में डंप कर देते हैं और वो हमारी नालियों को ब्लॉक करता है, गायों के गले में फंसकर मौत का कारण बनता है और समुद्री जीवों की हत्या का कारण भी। हाँ, एक बात और, ये जो रंगीन प्लास्टिक होती है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन में पहुँच जाते हैं, उससे मिट्टी व भूगर्भीय जल विषैला हो जाता है और अगर लोग प्लास्टिक जलाते हैं तो विषैले धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ मैं हरियाणा के प्रदीप सांगवान का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ जो पिछले 7 से हिमालय की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हिमालय हीलिंग मिशन चला रहे हैं। वे पहाड़ों से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम करके हिमालय को दूषित होने से बचा रहे हैं। वे और उनके साथी अब तक 800 टन कचरा निकाल कर रिसाइकिलिंग के लिए भेज चुके हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली में वेस्ट कलेक्शन सेंटर शुरू किया जो हर दिन 5 टन कचरा इकट्ठा करता है। अब हिमालयन रीजन का 95% कचरा रिसाइकिलिंग के लिए जा रहा है। आजकल हर बड़े शहर में सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़े बड़े पेड़ों के आसपास सीमेंट और कॉन्क्रीट के घेरे बना दिए जाते हैं, पेवर टाइल्स लगा दिए जाते हैं लगभग पैक ही कर दिए जाते हैं और खबर ये है कि हजारों बड़े पेड़ों का जीवन खतरे में है। कुछ वृक्ष बिना आंधी पानी के अपने आप ही गिर रहे हैं, जड़ से टूट रहे हैं, ये बीच से फटकर नष्ट भी हो रहे हैं। 2013 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर पेड़ों से 1 मीटर के दायरे में सीमेंट कंक्रीट का घेरा बनाने की मनाही की थी। इससे जड़ें खराब हो जाती हैं, जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता। पेड़ों में फीडर रूट्स होते हैं, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसी से पेड़ों को जरूरी पोषण मिलता है। पर घेरे के नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती और बारिश के दिनों में भी पेड़ पानी नहीं सोख पाते, धीरे धीरे पेड़ कमज़ोर होकर मर जाते हैं। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं, हरियाली होने से बारिश अच्छी होती है और नदियों में ज़्यादा पानी आता है। अब पेड़ों के कटने से बारिश असामान्य हो गई है, उसका एक कारण प्रकृति से छेड़छाड़ है। हम दिन के अखबार के साथ एक पन्ने का छोटा विज्ञापन भी हमेशा देखते हैं, जो देखकर हमेशा फेंक दिया जाता है। क्या कभी लोगों ने सोचा है कि उसके लिए कितने पेड़ कटे होंगे? हैदराबाद की बोवनपल्ली सब्जी बाजार से रोज 2000 टन कचरा निकलता था और 3.5 लाख बिजली का बिल आता था। यहाँ के भारी भरकम बिल को देख तेलंगाना एग्रीकल्चर मार्केट डिपार्टमेंट ने 2020 में करीब 3.5 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र माने CBG स्थापित किया। यहाँ 23 एकड़ में फैले बोवनपल्ली बाजार में फल फूलों से 15 से 20 लाख किलोग्राम कचरा रोज निकलता है। इसे डाइजेस्टर की मदद से ईंधन में बदला जाता है। इससे 30 किलोग्राम LPG और 300 यूनिट बिजली तैयार होती है। 100 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, 170 दुकानें रोशन होती हैं। बाजार कैंटीन में जैव ईंधन से 800 लोगों का खाना बनता है। इस सबसे बिजली खपत आधी से भी कम और कचरे की डंपिंग भी बेहद कम हो गई और इससे बीमारियों में कमी आई और शहर भी साफ सुथरा हो गया। चाहे वो हिमालयन हीलिंग हो, समुद्र का कचरा निकालना हो या सब्जी वेस्टेज से बिजली बनाना हो, एक ही बात सामने आती है कि कानून पर अमल कर अपना शहर, अपना वातावरण प्रदूषण से बचाना मेरा और आपका काम है। विज्ञापन जगत के पुरोधा एलेक पद्मसी ने एक बार कहा था, मेरा जो है वही मेरा है, जो सबका है वो किसी का नहीं। तो जो कचरा हम घर से निकालते हैं, हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी अपने घर की गंदगी सड़क पर फेंकने के बाद वो किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती। वही पर्यावरण को दूषित करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में पहाड़ गिरने से, ज़मीन धसकने से, बादल फटने से ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक में पूरा वातावरण ही अनचीना सा हो गया, क्योंकि हमने पहाड़ों को तोड़कर घर बना लिए, सुरंगें खोद डाली, पेड़ काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया। प्रकृति तो कुपित होगी ही, करोड़ों रुपयों की संपत्ति तो नष्ट हुई, इंसानों ने अपने कितनों को खो दिया, क्या हमने कोई सबक लिया? पेड़ तो वातावरण को संतुलित करने के लिए हजारों की संख्या में लगाए जाते हैं, पर उनमें से पनपते कितने हैं? पेड़ लगाकर जब तक भूलते रहेंगे कि उन्हें पानी भी देना है, उनकी देखभाल करनी है, प्रकृति हमें बारिश के लिए तरसाती रहेगी। सर्दी गर्मी का भूगोल बदल जाएगा, समुद्र किनारे भी लोग गर्मी से झुलसते रहेंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग पर सिर्फ सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। जब तक हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, पूरा वातावरण इतना ही डराता रहेगा। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग आपस में जुड़े हैं। पूरी दुनिया में 40-45 मंजिलें बनाने की होड़ में हम शुद्ध हवा और शुद्ध पानी से लोगों को वंचित करना जिस दिन बंद कर देंगे, ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी।
0: अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा क्रम के अंतर्गत वार्ता पर्यावरण असंतुलन कारण और निवारण। वार्ताकार थी सुश्री प्रमिला तिवारी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन यानी भीगी हवाओं का संगीत, रिमझिम फुहारों की सरगम और

दिलों में उमड़ती अनगिनत भावनाएं। जब काले काले बादल धरती को अपने आगोश में लेते हैं तो मन भी झूम उठता है। हिंदी सिनेमा में इस मौसम, इसकी इस मस्ती और उल्लास को प्रदर्शित करते कई सारे गीत हैं और उन्हीं में से कुछ यादगार गीत आज हम अपने इस कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं आपके लिए। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं फिल्म आया सावन झूम के इस गीत को, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत आनंद बख्शी का है और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, बारिश की हर बूंद अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है, कभी यादों की, कभी प्यार की और कभी जीवन की छोटी छोटी खुशियों की। जब सावन की फुहारें शहर की गलियों को भिगोती हैं तो दिल भी अनायास ही गुनगुनाने लगता है। ऐसा ही एक सदाबहार गीत जिसमें बारिश की रिमझिम, प्रेम की मासूमियत और मधुर संगीत का अद्भुत संगम है। आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल से ये अमर गीत। स्वर लता मंगेशकर का है और संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शुदा सावन का मौसम हो, ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही हो, हरियाली धरती को ओढ़ने की तरह ढक ले और मन झूमने लगे, ऐसे ही मनभावन वातावरण को शब्दों और सिरों में पिरोता है कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मिलन से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में इस मधुर गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है। ये गीत हमें गांव की सादगी, प्रकृति की सुंदरता और सावन की मस्ती का एहसास कराता है। इसकी मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल आज भी हर सावन में उतने ही ताज़ा लगते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म मिलन का सदाबहार युगल गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

शीत और सावन की फुहारें जब धरती को हरियाली की चादर ओढ़ा देती हैं, तब गांव शहर हर और पेड़ों की डालियों पर झूले सज जाते हैं। झूलों की ऊंची ऊंची पेंगों के साथ मन भी सपनों के आकाश में उड़ने लगता है। इसी मनभावन मौसम की मस्ती, चंचलता और नज़ाकत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत करता है फिल्म बहू बेगम का ये सदाबहार गीत। गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत रोशन का और बोल लता, स्वर है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म बहू बेगम का ये यादगार नगमा। श्रोताओं, मन भावन सावन जब दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग और भी निखर उठता है। ठंडी हवाएं, रिमझिम फुहारे और चारों ओर फैली हरियाली दिल में नई उमंग और नई उम्मीद जगा देती है। ऐसे ही सुहाने मौसम में प्यार के एहसास भी और गहरे हो जाते हैं। इन्हीं मनभावन भावनाओं को खूबसूरती से समेटे हुए फिल्म जुदाई का ये मधुर गीत, मधुर धुन, भावपूर्ण बोल और सुरीली गायकी इस गीत को बरसात के मौसम का एक यादगार नगमा बना देते हैं। तो आइए, सावन की भीनी भीनी खुशबू और प्यार की मीठी फिजाओं के साथ सुनते हैं फिल्म जुदाई का ये दिलकश गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की, गीतानंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सावन के इस मनभावन मौसम का आनंद लेते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है मॉर्निंग न्यूज़ सवा 8 बजे और समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी

0: न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है।

0: केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
4: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy.
2: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussion on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers' meeting. Here is a report from our correspondent.
5: Bhopal is hosting a major BRICS cultural meeting from today. The four-day event being held under India's BRICS presidency will continue till the 8th of August. It includes meetings of the BRICS Culture Working Group and BRICS Culture Ministers. The city has been specially decorated for the event. VIP Road and Bhot Setu have been beautified with fresh paint and murals. The first 2 days are for discussions among senior officials. The last 2 days will have the meetings of culture ministers who will finalize a joint declaration. India has placed two important proposals before the member countries. One is to create a shared digital platform for artists and cultural heritage. The second is to encourage joint UNESCO nominations by BRICS nations. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
2: Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the 3rd BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee, MPC, of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. The repo rate is the interest fee the RBI charges when it lends money to commercial banks. The central bank in its commentary will lay out the inflation risks, crude oil prices and global geopolitical uncertainties that may affect the Indian economy. The Supreme Court yesterday directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counseling Committee will begin round one registration for

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं स्वाति पाराशर। आइए सुनते हैं इनके गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज के कार्यक्रम में कलाकार है स्वाति पाराशर। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं ये गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं स्वाति पाराशर। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं ये गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।
1: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी।
2: भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान उद्योगपतियों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में किसान नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। श्री चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कल मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे करीब 5000 किसान लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद ने 60 नए सांदीपनी विद्यालय खोलने और 100% परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हमारे जीवन में कौशल यानी स्किल का महत्व किस तरह से है, इस विषय पर अब हम बात करेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अच्छे स्किल

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

हुआ था और हम सभी ने इस मनभावन मौसम का भरपूर आनंद भी उठाया होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से शुरू हुए मानसून का आधा सीजन हमारे शहर में बीत चुका है। इस दौरान हमारे शहर के लोगों को इंतज़ार था तेज बारिश का, जो कल यानी मंगलवार को ख़त्म हो गया। अगस्त अच्छी शुरुआत अच्छी हुई है। सावन के पहले सोमवार रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो कल पूरे दिन रुक रुक कर जारी रहा। हमारे शहर की बात करें तो ग्वालियर में 24 घंटे के दौरान 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये अगस्त माह में पिछले 6 वर्षों का सबसे बड़ा 24 घंटे का वर्षा का रिकॉर्ड है। हालांकि 25 अगस्त 2019 को 24 घंटे में 126.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मानसून सीजन में अब तक 302 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक बारिश का कोटा 338.2 मिलीमीटर है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोटा भी आने वाले दिनों में पूरा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि बारिश अच्छी होगी और साथ ही साथ आप सभी के चेहरों पर भी एक मदमस्त मुस्कान बिखरेगी, क्योंकि हम सभी पिछले दिनों बेहद गर्मी और उमस को महसूस कर रहे थे, परेशान थे, लेकिन इस बारिश ने न सिर्फ गर्मी को कम किया है बल्कि हमारे चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान बिखेर दी है। लेकिन इस बारिश के साथ साथ कुछ बेहद ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ में छाता, रेनकोट या ऐसे जूते या चप्पले पहने जो फिसलन रोधी हो। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां जल भराव होता है तो उन रास्तों पर थोड़ा सा संभल कर चलें। साथ ही बिजली के खंभों, टूटे हुए तारों और बिजली के उपकरणों से दूर रहें और उन्हें इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में हम नमी वातावरण में मौजूद होती है और ऐसे में यदि हमारे हाथ गीले हैं और हम बिजली के उपकरणों का ऐसे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें करंट लगने का डर भी रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जब भी बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं जो बिजली के खंभों के निकट हैं तो बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतें। और यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन चलाते समय अपनी गति को धीमी रखें। साथ ही जो आपके आसपास चलने वाले वाहन हैं उनसे भी पर्याप्त दूरी बनाए रखें। और यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पीने के लिए साफ उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। भोजन को ढककर रखें और बाहर का जहां तक संभव हो खाने से बचें। साथ ही जब जल भराव होगा, पानी होगा, तो मच्छर भी पनपेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मच्छरों से बचाव के लिए हमारे घर के आसपास पानी जमा न होने दें। यदि आपके घर के छतों पर या आसपास कुछ ऐसी उपकरण रखे हुए हैं या ऐसे कुछ सामान रखे हुए हैं जिनमें पानी भर सकता है तो ऐसे बर्तनों को या ऐसे चीज़ों को तुरंत पलट दें ताकि इनमें मच्छरों का जमाव न हो पाए। और इन दिनों में हो सके जितना संभव हो तो आप फुल आस्तीन के कपड़े ही पहनें ताकि मच्छरों के काटने से आप बच सकते हैं। बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उन्हें नालों, नदी या तेज बहाव वाले पानी के पास न जाने दें। अक्सर इन दिनों में जो जल स्रोत होते हैं, हम सभी सावन के महीने में पिकनिक पर जाते हैं और जल स्रोतों के पास जब पानी दिखता है तो हम नहाने भी जाते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उस पानी की गहराई कहाँ तक है और क्या है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसे वाटर सोर्सेस में जाने से बचें जिसका आपको अंदाज़ा न हो। साथ ही जो चेतावनी हमारी प्रशासन के द्वारा दी जाती है

निर्देशों का भी हम समय समय पर पालन करते रहें। फिलहाल तो ये मौसम है बरसात का, सावन का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में रिमझिम फुहारों के बीच झूलों का आनंद तो आप ले ही रहे होंगे, साथ ही आनंद लीजिए इस मनभावन गीत का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और श्रोताओं, अब बात करते हैं हमारे ग्वालियर में जो अभी गतिविधियां चल रही हैं उनसे जुड़ी हुई। तो हम आपको बता दें कि कला विधिका में 7 से 16 अगस्त तक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। समय इंडिया ट्रस्ट एवं पुस्तक मेला समिति के 10 दिवसीय मेले में आकर्षण 13 किलो वजन की श्री दुर्गा सप्तशती होगी, जिसे विशेष रूप से जयपुर के डॉक्टर संदीप जौहरी ने संकलित किया है। करीब 800 पृष्ठों वाली यह ग्रंथावली चांदी के पत्रे से बने आकर्षक बॉक्स में रखी जाएगी। मेले में 80 प्रकाशनों की लगभग 1,00,000 पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। 40 अलग अलग स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं। धार्मिक और ज्योतिष साहित्य में रावण संहिता और लाल किताब जैसी चर्चित पुस्तकें भी रहेंगी। वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए गुनाहों के देवता और नौकर की कमी जैसे लोकप्रिय कृतियां भी आकर्षण का हिस्सा होंगी। तो यदि आप इस मेले में किताबों पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इस मेले में ज़रूर शिरकत करें। और हम आपको बता दें कि मेला जो आयोजित होगा वो 7 से 16 अगस्त तक होगा और स्थान होगा कला विथिका पड़ाव ग्वालियर। तो जो भी पुस्तक प्रेमी हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं, वो इस मेले में ज़रूर जाएं। साथ ही हमारे ग्वालियर शहर में इस समय आयोजित हो रहा है सावन मेला, और ये सावन मेला व्यापार मेला परिसर में आयोजित हो रहा है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने सावन मेले का एक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें एक शेड्यूल के मुताबिक 5 अगस्त यानी आज म्यूजिकल ग्रुप की कराओके सिंगिंग होगी, 6 को आर्केस्ट्रा, 7 को देशभक्ति गीत और डांस प्रतियोगिताओं, 8 से 12 तक नृत्य गायन प्रतियोगिताओं, और 13 को आर्केस्ट्रा और 15 अगस्त को एक शाम देश के नाम कार्यक्रम होगा। इसी क्रम में 16 अगस्त को सावन सखी उत्सव, मेहंदी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, 17 को शिव भजन, 18 को म्यूजिकल नाइट, 19 से 22 तक लाइव स्टेज शो, 23 को शिव तांडव और महाकाली नृत्य, 24 को डांसिंग सिंगिंग एवं मॉडलिंग, 25 को देशभक्ति गीत, 26 अगस्त को सरगम संगीत समूह का कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आप सावन मेले का तो आनंद लेंगे ही, साथ ही साथ यदि आप इन प्रतियोगिताओं में रुचि रखते हैं तो इनमें ज़रूर शामिल होइएगा। तो सावन मेले का जो शेड्यूल हमने आपको बताया उसके अनुसार आप इस मेले में ज़रूर जाएं। और यदि बात हम करें सावन की, जैसा कि अब रिमझिम फुहारों का दौर शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में एक जो बेहद ज़रूरी बात है वो है वृक्षारोपण। अब इसके लिए कहते हैं कि अगर हम बारिश के दिनों में पौधे लगाते हैं तो उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जहाँ पर भी खाली भूमि है, खाली जगह है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि हमारी जो धरती है वो हरी भरी रहे। और यदि धरती हरी भरी होगी तो हमें शुद्ध वायु तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जो घुमरते हुए काले बादल हैं वो स्वतः ही आकर्षित होकर हमारे शहर में

वर्षा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे और साथ ही साथ अपनी इस धरा को हरियाली से श्रृंगारित करेंगे।

श्रोताओं, देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2027 से चुनिंदा व अक्टूबर 2028 से सभी वाहनों में AIS 230 मानक के अनुरूप V2V प्रणाली को अनिवार्य करने की रूपरेखा तैयार की गई है, यानी अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी वाहनों में

कनेक्टेड तकनीक अनिवार्य होगी। इस तकनीक के जरिए वाहन एक दूसरे से रियल टाइम में जानकारी साझा करेंगे, जिससे संभावित दुर्घटना से पहले ही चालक को चेतावनी मिल सकेगी। तो इस विषय पर सरकार के जो प्रस्ताव हैं वो क्या हैं, आइए इस बात पर भी गौर फरमाते हैं। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2027 से जिन वाहनों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा उनके लिए AIS 230 मानक का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी L दोपहिया तिपहिया वाहनों, M यानी चार पहिए वाले पैसेंजर वाहनों और N यानी माल वाहकों सेगमेंट के जिन वाहनों में V2V प्रणाली लगी होगी उन्हें निर्धारित मानदंड AIS 230 का पालन करना होगा। अक्टूबर 2028 से L, M और N श्रेणी में बनने वाले सभी दो पहिया तिपहिया फोर व्हीलर वाहनों में V2V सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। V2V अन्य इंटेलिजेंट परिवहन प्राणियों के लिए 5.875 GHz से 5.925 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। इसे लाइसेंस की ज़रूरत से छूट, जिससे देश भर में लागू करना काफ़ी आसान होगा। AIS 230 के तहत रेडियो परफॉर्मेंस यानी GPS आधारित लोकेशन साइबर सुरक्षा के मानक तय होंगे। सरकार व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर संचार प्रणाली भी लागू करेगी। इस व्यवस्था में ट्रैफिक सिग्नल, बिजली खंभों, पुलों, फ्लाईओवरों के किनारे के साथ बैरिकेड वाले क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी ढांचे पर सेंसर लगाए जाएंगे। ये सेंसर आसपास से गुजरने वाले वाहनों को संभावित खतरे के बारे में पहले से ही अलर्ट भेज देंगे। इस तकनीक को भविष्य की स्वचालित और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नींव माना जा रहा है। ये एडवांस सिस्टम आसपास चल रहे वाहनों के बीच रियल टाइम में गाड़ी की स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन और ब्रेक लगाने या स्पीड बढ़ाने जैसी ज़रूरी जानकारियां साझा करती है। यदि आगे कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाता है तो लेन बदलने का खतरा होता है, सामने टक्कर की आशंका बनती है या पास में कोई एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहन आ रहा होता है तो चालक को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इन आंकड़ों के आधार पर अगर आगे कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाता है या टक्कर का खतरा बनता है तो पीछे आ रहे वाहन को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। शुदा पारंपरिक वाहन सुरक्षा तकनीक कैमरा, रडार या गाड़ी में लगे अन्य सेंसर पर निर्भर करती है, लेकिन V2V कम्युनिकेशन तकनीक इससे एक कदम आगे है। ये ऐसी जगह या वाहनों से जुड़ी जानकारी भी साझा कर सकती है जो चालक को सीधे दिखाई न दे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने मसौदे में कहा है कि ये तकनीक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडास के साथ मिलकर काम करेगी और उसकी क्षमता को बेहतर बनाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जब V2V प्रणाली लागू होगी तो सड़क दुर्घटनाओं का जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि आप जब भी सड़क पर वाहन चलाते हैं तो पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाएं, क्योंकि दुर्घटना आपकी असावधानी से ही नहीं दूसरे की लापरवाही से भी हो सकती है। तो बिल्कुल सावधान होकर और एकदम जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए गाड़ी चलाने पर। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए वाहन को ड्राइव करते हैं, तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है उसका कोई ना कोई इंतज़ार भी कर रहा होगा।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अश्विनी मोरघोड़े का गाया राग ललित। आइए सुनते हैं राग ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अश्विनी मोर घोड़े का गाया राग ललित। आपके साथ संगत कलाकार तबले पर थे नारायण शर्मा और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले में इस बार पर्याप्त बारिश के चलते खरीफ फसल की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है। पिछले वर्ष धान की बुवाई 1,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई थी, जो इस वर्ष 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसी तरह मक्का फसल इस वर्ष 1,40,000 हेक्टेयर में बोई गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। कृषि विशेषज्ञों ने लगभग रोज हो रही बारिश को सोयाबीन और मक्का फसल के लिए नुकसानदायक और धान के लिए लाभदायक बताया है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरण दावों के निराकरण के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों का नियमानुसार शत प्रतिशत परीक्षण एवं निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान अवधि में प्राप्त होने वाले नए दावों को भी स्वीकार कर उनका परीक्षण किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कलेक्टर नेहा मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सिवनी जिले में दस्तक से स्टॉप डायरिया अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बीते दिनों सिवनी में आयोजित हुए बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। वे अपने अथक परिश्रम से पूरे समाज का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा देश और प्रदेश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि छत्री धान को अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल गया है और ये हमारी देशज और पारंपरिक कृषि का वैश्विक सम्मान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3,941 किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी के बोनस के रूप में 2,82,00,000

जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीते दिनों विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला जेल नगझर और जिला बाल सुधार गृह सिवनी में हेपेटाइटिस बी एवं सी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान जिला बाल सुधार गृह के 100 बंदियों की हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की गई, जिसमें एक बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया। वहीं जिला जेल नगझर में 269 बंदियों की जांच की गई, जिनमें 3 बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए गए। वहीं अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो बीते दिनों सिवनी में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी के कवियों और शायरों ने श्रोताओं के बीच अपनी पसंदीदा रचनाएं सुनाई। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ 7 अगस्त से किया जाएगा। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर नेहा मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाते हुए आमजन तक शासन की सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सभी जिला एवं मैदानी अधिकारी अनिवार्य रूप से फील्ड में रहेंगे। इस दिन जनसंवाद, निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रमण से पूर्व संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण की तैयारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सिवनी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सिवनी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो मित्र विशाल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार आशा भोसले की, गीत अनजान का है और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है आप सभी श्रोता मित्रों ने। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, आमना आसमा परी इकबाल अहमद फूल वाले इमरान अहमद फूल वाले, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा दे रदोस, मुनीरु नीसा और इनके मित्रजन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म नमक हलाल से इस गीत को।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की पसंद पर, संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, चांदनी दीपक उर्मिला देवी यादव, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा, कमल जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत कमल सहनी पिंगा और इनके मित्रजन। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बेताब से इस गीत को, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की है। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नियमित आहूजा। बड़ा बमचौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय बमारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी बिट्टू। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से इस गीत को। बोल नक्श लालपुरी के हैं, संगीत खयाम का और स्वर है आशा भोसले का।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सत्ते पे सत्ता से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और दिलराज कौर की। गीत गुलशन बाबरा का है और संगीत राहुल देव वर्मन का। पसंद आप सभी की। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बद्रुबली अंसारी, फर्जीवली अंसारी।

और फरजू अली अंसारी। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर और इनके मित्रजन। छटिया पोकर डुमराव से फातिमा बली बेलदार, डब्लू बली बेलदार, असमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार। बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया, उल्लाह कुटरिया और इनके साथी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सत्ते से, सत्ते पे सत्ता से इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। स्वर लता मंगेशकर का, गीत वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की है। गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा। बिहारी कॉलोनी महासुमंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ग्राउ कैरो जिला तारंतरन पंजाब से गुरदर्शन, लाल जलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशवद। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से इस गीत को।

0: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से। स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता मित्र। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति कुंती साहू, डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म लोफर से इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म लम्हे से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता मित्र जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, हर्षद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, पोती कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख बयाल परिवार। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म लम्हे से इस गीत को।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म अभिनेत्री से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत मजरूह का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता मित्रों ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 10:58 होने को हैं। अब से लेकर सभा की समाप्ति तक शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे। पहले आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और उसे 5.25% पर बरकरार रखा है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय इस बैठक के पहले दिन प्रमुख अधिकारी व प्रतिनिधि विषय और मसौदे पर चर्चा करेंगे। इसमें 12 देशों के संस्कृति मंत्रियों सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उद्योगपतियों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। श्री चौहान ने कल दिल्ली में किसानों से चर्चा के दौरान भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उसके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की ओर से तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित कई शीर्ष खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हमारा नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: राहुल ध्रुव बात कर रहा था।
2: तो क्या करते हैं राहुल जी आप?
3: देखिए, मैं तो जॉब पे ज्यादा रहता हूँ, यहाँ पे खास तौर पे समय निकाल के मैं सुनता भी हूँ आपके लगातार कार्यक्रम, फोन भी लगाता हूँ। काफी समय बाद कॉल किया है, बाकी 1 महीने के बाद।
2: बहुत अच्छी बात है।
3: क्या है, मैं खेती में भी थोड़ा बिजी हो गया था, रोपाई चल रही थी अभी।
2: अच्छा,
3: कारण से मैं कॉल नहीं कर पाया।
2: तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे नए नए श्रोता जो है वो कार्यक्रम से जुड़े।
3: मैं गाना सुनना चाह रहा था।
2: जी बताइए अपनी फरमाइश।
3: दामिनी फिल्म का है।
2: दामिनी फिल्म का कौन सा गीत?
3: पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। रेडियो संग श्रोता मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा दोस्तों के नाम। मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे विपिन कटारे और शिमला से रहेंगे हमारे विमल राकेश जी।
2: आपकी और आपके दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं दामिनी फिल्म से ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, कौन बोल रहे हैं
1: जी? छोटू चक्रधारी बोल रहा था।
0: छोटू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: करगी रोड कोटा बिलासपुर सीजी से।
0: कोटा बिलासपुर से बोल रहे हैं?
1: हाँ
0: तो क्या करते हैं आप?
1: जी, अपना कारोबार है, सिलाई का काम है।
0: तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी अभी क्या है, सावन का महीना चल रहा है, सुना दो। जय जय श्री शंकर काटा लगे न कंकर।
0: बताइए और क्या करते हैं आप?
1: बस अपना ही है, सिलाई का काम है, ये सिलाई चलते रहता है और तो रेडियो हम सुनते रहते हैं, इधर काम भी होते रहता है, मनोरंजन भी, दोनों काम होते रहते हैं साथ में। सबसे ज्यादा पसंद तो हमको यही है, फोन कार्यक्रम वाला अच्छा लगता है।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: अरे वाह, वाराणसी से बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो बताएं अपने शहर के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी।
1: देखिए दीदी, देखिए ये जो सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ काशी विश्वनाथ जी का धाम बना हुआ है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इस समय कांवरियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। करीब करीब 3-4 लाख कांवरिया यहाँ प्रतिदिन दर्शन करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: और गंगा जी में इस समय जल बढ़ा हुआ भी है।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: तो
0: बारिश का महीना।
1: यहाँ क्रूज है, बड़ी बड़ी नाव, छोटी नाव पर प्रतिबंध है, लेकिन यात्रियों घुमाने के लिए यहाँ बड़ी नाव है क्रूज, तो वो चलती है।
0: और भाई बनारस का पान भी बड़ा मशहूर है।
1: जी जी जी, वो तो बहुत फेमस है पूरी दुनिया।
0: हाँ जी,
1: यहाँ की बनारसी साड़ी और बनारसी पान।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बनारसी साड़ी और पान बहुत मशहूर है।
1: और यहाँ दीदी खान पान भी बहुत फेमस है। यहाँ सुबह का नाश्ता जो कचौड़ी जलेबी है वो भी बहुत टेस्टफुल होता है। यहाँ की दुकानें बहुत हैं।
0: तो अब अपनी फरमाइश बताएं।
1: दीदी इस समय मौसम तो यहाँ सावन की तरह एकदम लग रहा है कि सावन है, तो हमको आज सुना दे चुपके चुपके का एक गाना है आपकी सजन सावन में
2: आपके।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो,
0: हाँ जी कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: जी मैम, कैसे हो आप?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त?
1: मैडम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: एक गाना सुना है, मूवी का नाम है कलाकार और गाने के बोले नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। मैम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: कौन बोल रही हैं
1: मैं देविका मिस
0: आप? कहाँ से बोल रही हैं देविका जी?
1: दीदी से एमपी से। और आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम शबाना है। क्या करती हैं?
1: मैं बस घर पे रहती हूँ और स्टडी कर रही हूँ।
0: अच्छा, अभी आप स्टडी कर रही हैं। कौन सी क्लास में हैं?
1: अभी मेरा 11th है,
0: 11th है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका 11th में?
1: बायोलॉजी।
0: क्या बनना चाहती हैं आगे जाके?
1: स्टडी कर रही हूँ।
0: कुछ सोचा तो होगा ना फ्यूचर के लेके अपने, कि मुझे ये बनना है, ये करना है।
1: डॉक्टर बनूंगी।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। और अगर मेहनत करेंगे आप तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर इंसान चाहे, मेहनत करे, पूरी लगन से अपने काम को करे, तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। देविका, ये बताओ कि आप गाना कौन सा सुनोगे आज?
1: मूवी का नाम है धूम थ्री,
0: अच्छा, और गाने के बोल?
1: कमली सॉन्ग है ना।
0: कमली। हाँ जी, बिल्कुल है। कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है?
1: हाँ, मैं मतलब अभी तो पहली बार ही कॉल किया है मैंने, लेकिन फोन प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम सुनते रहो। आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करेगी सुने, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं जीनत जी?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा जी, तो अभी क्या चल रहा है इस वक्त? आप बात भी कर रही हैं और आपका घर का कामकाज भी चल रहा होगा।
1: जी, घर का काम तो थोड़ा तो निपटा लिया, खाना वाना, बर्तन झाड़ू सब हो गए। अब छोटा मोटा कपड़े उपड़े धोना है, देर से धो लो।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए काम तो बहुत अच्छे से हो जाता होगा, रेडियो सुनते
1: जी,
0: रहते होंगे।
1: रेडियो ही सुनती रहती हूँ, काम होता रहता है।
0: कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है जी? महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम जाते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम जाते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम जाते हैं, बहुत से कार्यक्रम
1: स्वास्थ्य
0: जाते
1: के लिए
0: हैं।
1: अच्छा रहता है, महिलाओं का जो आता है।
0: तो कौन सा गीत आज आप फरमाइश करेंगी?
1: का नाम है किशन कन्हैया है ना।
0: कौन सा गीत इसका?
1: मेरे हम सफर बीती बातें याद करो, मुलाकातें याद करो।
0: अरे वाह, आप तो गाते भी बड़े अच्छे हैं, शौक है आपको गाने का?
1: गाती रहती हूँ, रेडियो चलता रहता है तो गाती रहती हूँ। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ, रेस्ट करती हूँ और पेपर वेपर पढ़ती रहती हूँ, जानकारी लेती रहती हूँ।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम नमस्ते, तोमर सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: और क्या पसंद लेकर आए हैं आज इस कार्यक्रम में, हम कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए दयावान फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, आज फिर तुम पे प्यार आया है, अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास साहब का गीत है ये।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक टीचर हूँ, बचपन से ही रेडियो से मेरा लगाव रहा, फिर अभी 2006 से धार आ गया मैं, तो यहाँ भी मेरे पास रेडियो भी है, मैं मोबाइल के माध्यम से डीटीएच के माध्यम से भी रेडियो सुन लेता हूँ।
0: और आपकी पसंद का गाना सुनिए आप।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और क्या करते हैं
1: आप? मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़े हैं दीदी, बराबर आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके लग रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये आवाज क्या कहना, एकदम लाजवाब कार्यक्रम पेश करने का आपका अंदाज एकदम बेहतरीन।
0: तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल होती है। कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है
1: दीदी? मैं तो आपकी आकाशवाणी भोपाल की जितने भी अंतर्गत कार्यक्रम आते हैं मैं तो लगभग सुबह से शाम तक सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। फॉरेन कार्यक्रम हो, सबसे फर्स्ट कार्यक्रम तो आपका एक फॉरेन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। फोन करने गीत सुनने कार्यक्रम बहुत अच्छा, बात हमारी गीत तुम्हारी हो, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, सारे कार्यक्रम लाजवाब।
0: तो कौन सा गीत सुन पाए आपको
1: दीदी? आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा साजन का घर, और उसमें गाना है सावन आए बादल छाए।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन
1: हेलो।
0: करें, गीत सुने।
1: हाँ नमस्ते मैडम,
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद सलमान बोल रहे हैं मैडम शहडोल से।
0: आप सुनाएं शहडोल के हालचाल, बताएं क्या पानी वगैरह गिर रहा है वहाँ पे?
1: शहडोल के हाल चाल बहुत अच्छे हैं मैडम, और रिमझिम की बरसात लगी हुई है 2-3 दिनों से। रिमझिम की बरसात है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन रिमझिम की फुहारे गिर रही है मैडम।
0: तो सलमान जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मेरा वो गाना सुनवा दीजिए मैडम, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना, और गाने के बोल हैं फिर मेरे।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: रतलाम डिस्ट्रिक्ट से सरला चावड़ा बोल।
0: सरला जी?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, और सरला जी कैसी हैं?
1: गाना सुनना है?
0: हाँ जी बिल्कुल, गाना हम आपको सुनवाएंगे। हाँ, बताएं कौन सा?
1: मेरी लड़की की पुण्यतिथि थी 30 तारीख को।
0: जी,
1: मेरे को मेरी लड़की उसके उपलक्ष में मेरे को तकदीर का गाना सुनना है, पप्पा जल्दी आ जाना।
0: ये आप अपनी बेटी के लिए ये गीत डेडिकेट करना चाहती हैं?

0: श्रोताओं, आज का हमारा फोन करें गीत सुनें कार्यक्रम आप इजाजत दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें, प्रस्तुति शबाना खान की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अभियान को भी इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया है। मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक किया जा सकेगा। प्रदेश में राशन वितरण के पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों द्वारा रिकॉर्ड 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और अनुशासन देशभर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। इन्हीं के साथ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अगले श्रोता बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म अजनबी से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से। श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे आप फिल्म मेरे जीवन साथी से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार आर डी बर्मन। फरमाइश में आई है बिहार से, श्रोता हैं शफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, दिल्ली से सोनम डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से एस डी अंसारी, गुलफराज भागलपुरी। अगले श्रोता गांधी चौक बाड़मेर से हैं, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

बर्मन। फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगली श्रोता नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म कुदरत से। गीत लिखा मजरू ने, गीत को संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने। फरमाइश हमें आई अंबेडकर चौक खुदी से। श्रोता है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, रोहित, लालू राम, पूरन, रोहित, छोटू, डुंडुन। अगले श्रोता धमतरी से हैं, रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता, स्वाति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी कायक अंतारे का 21वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी कायक अंतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी कायक अंतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 21वां भाग। अब तक आपने सुना कि महामात्य ने बंगदेश से भर्तृहरि की बहन मैनावती को बुलाया है। राजा को क्या चिंता है, शायद अपनी बहन को वे उद्विग्नता के बारे में बता सकें। उज्जैनी में बसंतोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें एक इंद्रजालिक अपने जादू का प्रदर्शन करता है। अब आगे

0: अवंती में बसंतोत्सव हो रहा है। दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराज पधारे हैं। उद्घोषक ने कहा था कि वो अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः केवल एक कार्यक्रम होगा। इसलिए हास्य के बाद अब इंद्रजाल का कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत होता है। ये अंतिम कार्यक्रम है।
1: महाराज की जय हो। सुरुचि संपन्न दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये स्मरण करवाना चाहता हूं कि काल के आगे कोई भी इंद्रजाल नहीं ठहरता। फिर ये तो साक्षात महाकाल की भूमि है। यहां उपस्थित समस्त महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि यदि कोई इंद्रजाल का ज्ञाता हो तो वो मेरे इस खेला को मात्र एक क्रीड़ा समझकर मुदित हो ले। ये खेला कौशल भी है और साधना भी, साचा भी है और कृत्रिम भी, और हाँ ये माया भी

0: भ्रम का प्रपंच है।
1: अब होगा अच्छा खेल,
2: अब होगा अच्छा खेल। हाँ मित्र, हाँ मैं भी यही समझता हूँ।
0: बंधु भगिनियों, आज राजा धीराज अवंती नरेश महाराजा भर्तृहरि के सम्मुख मुझे अपने कौशल को प्रदर्शित करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं वो कौतुक गढ़ रहा हूँ जो कभी मेरे पूर्वजों ने अनिंद सुंदरी वासव दत्ता के वियोग से पीड़ित वत्सराज उदयन को दिखाया था।
2: हाँ, दिखाया था। हाँ, दिखाया था।
0: अब बताइए श्रीमान, क्या दिखाऊं? भूमि के अंक में उपस्थित चंद्रमा, आकाश में डोलते हुए पर्वत, जल के बीच प्रज्वलित अग्नि, या मध्याह्न के समय की अर्धरात्रि? अपनी बढ़ाई अपने आप क्या करूं? आप जो भी देखना चाहे वही प्रस्तुत कर सकता हूं। सर्वप्रथम मैं एकांत की सृष्टि करता हूं। सावधान होकर किसी एक दृश्य को चुन ले, दो चुन ले, या अधिक से अधिक तीन।

0: इसके लिए आपके पास 3 पल का समय है। 9 श्वास, 13 धड़कने।
1: प्रिय।
2: हाँ स्वामी, मैं यही हूँ।
1: प्रिय, नरेश की क्या इच्छा है?
2: स्वामी, नरेश सर्वप्रथम तुम्हारे कथन का प्रमाण चाहते हैं।
0: तो ऐसा ही हो।
3: अद्भुत, वो देखो आकाश में वो कमल स्थित ब्रह्मा।
4: कमल स्थित ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को देखो, देखो, देखो, देखो।
3: और चंद्र को मस्तक पर धारण किए चंद्रमौली शिव वहाँ है।
5: और वो रहे
3: शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। उधर हैं गजराज ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र और नृत्य करती अप्सराएं।
2: भद्रजनों, आप में से कोई अपने किसी प्रिय का दर्शन करना चाहता है? कोई ऐसा है जो आपके निकट नहीं है, जिसे देखे लंबा समय बीत गया है, जिसकी स्मृतियां आपको आवेशित कर रही हैं, जिसे देखने की उत्कट इच्छा है आपकी?
3: क्या दिखाएगी ये? क्या दिखाएगी ये?
0: तो दृष्टि को भ्रू और नासिका के मध्य भ्रिकटी पर लाकर अपने उस प्रिय का स्मरण करे। 3 पल, 9 श्वास, 13 धड़कने।
6: राजा भर्तरी क्या देख रहे हैं?
7: शची, शची, शची, शची, चारों मित्र, चारों मित्र, शची, चारों मित्र, शची।
8: अरे अरे अरे, देखिए देखिए, अरे आश्चर्य, ये कंथा कमंडलधारी अवधूत कौन है?
9: अरे जो रक्षकों को धकेलता हुआ मंच स्थल तक आ पहुंचा है, कौन है?
3: कौन है? कौन है वो?
7: महाराज, महाराज आप?
8: महाराज तो तुम हो भर्तरी। गोरख, गोरख,
7: पधारे, पधारे महाराज, आसन ग्रहण करें, सेवक को आज्ञा दें, किस योग्य हूं मैं?
8: मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए राजा, मैं तो तुझे याद दिलाने आया हूं। कामिनी, कंचन, काया और माया।
7: महाराज, ये दैनिक व्यवहार है, काया के भी धर्म है।
8: काया के भी धर्म है, गोरख, गोरख।
7: आप मुझे नदी के तीर पर छोड़ गए थे, उस नदी को मैंने सांसारिक नाव से पार किया, अभी भी देख रहा हूं कि आगे क्या होता है। मैं अभी भी इसी द्वंद में भटक रहा हूं महाराज, कि क्या प्रामाणिक ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष और अनुमान मनुष्य के धर्म का ज्ञान करवाने में सक्षम है? गुरु के उपदेश का माध्यम शब्द है, तो शब्द की सत्ता क्या है? मैं इस उलझन को ना तो समझ पा रहा हूं और ना ही व्यक्त कर पा रहा हूं।
8: राजा, तो तू गुरु की कृपा पाने का यत्न कर, यत्न। माया के इस जाल से बाहर निकल कर देख, सब कुछ न सही फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा।
7: गुरु, गुरु कहाँ मिलेंगे?
8: वो या तो स्वयं ही तुझ तक पहुंचेंगे या तुझे उनकी खोज करनी होगी।
10: कौन है रे तू जो रंग में भंग कर रहा है? तो साहसी?
8: हाँ, अपने गुरु का ध्यान कर, ध्यान कर, जान जाएगी। अलख, अलख, बोल, गोरख, गोरख जय हो।

0: प्रेत को तो तूने मिटा दिया। तो अब संसार का फंदा मेट के दिखा दिखा। गोरख गोरख।
1: ओ तो तुम गोरखनाथ के शिष्य हो।
0: और तुम जालंधर नाथ की?
1: नहीं, मैं जालिपा गुरु की शिष्या नहीं, शिष्या तुल्य हूं। वो मेरे पूज्य हैं, मैंने उनसे तंत्र और रसायन विद्या सीखी है। ओघड़ हठ योग से मनुष्य शरीर को जीत सकता है, किंतु परम गुरु को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि जानने वाला संसार से अलग नहीं है। संसार यदि माया है तो जानने वाला भी उसी माया का लघुत्तम अंग है। लघुत्तम से गुरु होना इस समूचे सृष्टि प्रपंच से ऊपर उठ जाना है।
0: अलग, अलग।
1: मैं वो शक्ति अर्जित नहीं कर पाई। राजा भृतहरि तो गुरु के पास तब भी नहीं पहुंचा। ओकर, तुम इस वसंती मेले में कैसे आए?
0: योग माता, ये स्मरण दिलाने के लिए कि राजा भृतहरि केवल अवंती के लिए नहीं है।
1: प्रजा को राजा की आवश्यकता है। अपना नाम नहीं बतलाया ओघड़ तुमने?
0: गुरु महाराज ने मुझे वज्र भैरव नाम दिया है।
1: अपने गुरु से दंड प्रणाम कहना मेरा।
0: अवश्य। इतनी सूचना तुम्हें देनी है कि जिस प्रेतपुर को तोड़ दिया है तुमने, वो अभी फिर कहीं भी बस सकता है। उस मायापुर को रचने वाली काल रात्रि अपने विषधरों, कुकरों और माया मोर के साथ अभी जीवित है। प्रतिशोध की आग में दहकती हुई तुम उसका जाल तोड़कर निकल आए। तुम्हारी बहन ने जाल को जला दिया। बहुत क्रोध में है वो आक्रमण करेगी। सावधान रहना, सावधान। गोरख गोरख।
2: श्रावण मास के प्रारंभ में राजा भर्तहरि पैठार गांव जाकर शची को अपने साथ उज्जैनी ले आए। नई रानी के रूप में प्रजा ने शची का परिचय तब पाया जब वो राजा की रानी बनकर महाकाल की अर्चना और आरती के लिए गई। पैठार में शची का जीवन सहज था, उसे सभी कुछ सरलता से समझ में आ जाता था, किंतु यहां इस राजमहल में वो हर क्षण चकित विस्मयित होती रहती थी। पैठार में सब कुछ उन्मुक्त और खुला खुला अपने वश में।
3: शची, कोई अभाव कोई असुविधा तो नहीं?
4: नहीं देव, यहां असुविधा का प्रवेश ही नहीं है।
3: किंतु तुम्हारे मुख पर पैठार जैसी उत्फुल्लता नहीं मिलती।
4: देव, वहां मुझे हर समय कुछ करने को रहता था। कार्य करते रहने के बदले मैं प्रसन्नता मिलती है। शायद आप इसी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं।
3: हाँ, कदाचित यही उत्फुल्लता हो।
4: मैं क्या करूं महाराज, वन में जन्मी, वहीं पली और बढ़ी। मेरा वन यहाँ भी मुझसे छूट नहीं पा रहा है।
3: तो फिर ऐसा करो, हम दोनों तुम्हारे वनांचल की ओर चलते हैं। कदाचित वहां मैं कुछ नया जान या सोच सकूं। पीपल के पत्ते की तरह दोलायमान मेरे विचार कहीं स्थिर हो सके। शची
4: महाराज, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सभी आपकी ही ओर देखते हैं।
3: प्रजा को सुख संतोष देना चाहता हूं, पर इस समय मैं स्वयं ही उद्विग्न हूं। चलो चलते हैं।
5: पधारिए महाराज, पिंगला आपका स्वागत करती है।
6: महादेवी, मैं राजकुमार को लेकर बाहर जाती हूँ।
3: ठहरो चंपा।
6: जी।
3: आज हम साथ रहना चाहते हैं।
6: देव की आज्ञा दासी ने सदैव कृपा मानकर सहेजी है, किंतु
3: महारानी चंपा तुम्हारी अनुमति से भर्तृहरि की अंकशायिनी बनती रही है, इच्छा से या

0: अनिच्छा से भी, या फिर कहूं कि इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं रही, हो भी तो उसका धर्म। महादेवी आज इसे साथ रहने का अवसर देंगी तो मुझे सुख मिलेगा, और वयसिका वो भी साथ रहे तो।
1: चंपा
2: जी,
1: तुम ठहरो और वयसिका को भी बुला लाओ।
2: जी अच्छा।
1: महाराज की इच्छा आज्ञा के अनुसार। बैठो तुम दोनों यहीं, ये रानी वास है, यहां हमारी आज्ञा चलती है। हम आज भी अब तक महारानी हैं। महाराज हमारा सिर काट दीजिए, गजपथ के नीचे कुचल जाने का दंड दीजिए आप हमें, क्षिप्रा में डुबोइए, किंतु आपसे उपेक्षित होकर अब जीना संभव नहीं है। महाराज हमारे होने या न होने से कहीं कोई अपशय नहीं होगा। महाराज आप हैं तो सब रहेगा। कुमार को चंपा पाल लेगी और हम वैसिका से वचन ले लेंगे कि वो यहां पर रहकर हम पर उपकार करे। यही शची है जो आपके प्रति अकुंठ मन से समर्पित है। बस इनके समक्ष हमारा अपराध बता दीजिए, हम आपसे अपराध का प्रमाण नहीं मांगेंगे और किसी भी स्त्री को अपने पति से प्रमाण नहीं मांगना चाहिए। किंतु बता दीजिए राजन, और हमें उस अपराध के लिए मृत्यु दे दीजिए, या फिर हम ही चुन लेते हैं। महाराज प्रातः आप हमारा जीवित मुख नहीं देखेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं।
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महारानी।
1: हाँ देव, नरेश हैं आप, अभी इसी क्षण आप हमें बंदी बना सकते हैं, आसपास परिरक्षक नियुक्त कर सकते हैं जो हमें मरने भी नहीं देंगे। हमारे वश में न जीवन है और न मृत्यु।
0: महादेवी अभी तो आप कह रही थी कि यहां आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, यहां की शासिका आप हैं ये मैं भी भली भांति जानता हूं। अब आप सामान्य हो जाइए, ये सब भूलकर। मैं स्वीकार करता हूं महारानी कि तुम्हारे उस व्यापार व्यवहार से मेरा पुरुष दंभ आहत हुआ था, मैं क्रुद्ध था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि पुरुष की स्वेच्छाचारिता से खिन्न स्त्री पर भी तो इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। पिंगला मैं समझ रहा हूं और उस घटनाक्रम को भुला रहा हूं। विश्वास करो, हाँ विश्वास करो। पिंगला मैंने उपहार में तुम्हें दिया था वो विचित्र फल, उसके पीछे मेरी प्रच्छन्न लालसा थी कि तुम्हारे सौंदर्य में और अभिवृद्धि हो, वो स्थायी हो, ताकि मैं जीवन भर उसका उपभोग कर सकूं। तुमने उस फल को किसी और को दे दिया, उसे जिस पर तुम प्रसन्न थी। कौन जाने इस घटना में महाकाल की कौन सी इच्छा निहित थी। मैं आज शची को साथ लेकर अपने द्वंद के उपशमन में लगा था।
1: देव, रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्ति पर है और आपने अभी तक भोजन नहीं किया।
0: ए?

0: तुम सबने भी तो ग्रहण नहीं किया है। इस देह में हम काल के जाल और भूख प्यास के आग से मुक्त भी नहीं हो सकते। भोजन आरंभ करो सब। और हां शची, आज की ये रात हम महारानी के कक्ष में व्यतीत करना चाहते हैं।
1: चलो वैसिका, और चंपा तुम भी महाराज को विश्राम करने दे।
2: जी ठीक है।

0: भर्तारी फिर राजप्रसाद को छोड़कर कहीं निकल गए हैं, किसी को कुछ भी बताए बिना। कहां किस ओर गए हैं कोई नहीं जानता। उस रात वो रानी पिंगला के शयनागार में थे और पिंगला केवल इतना ही बता पा रही थी कि उन्होंने नींद में राजा को बुदबुदाते हुए सुना था, रावण, त्रिकूट, पाणिनि, चंदाचार्य, परंपरा, शब्द, गुरु। वो कई बार अलख अलख कहते और उनकी नींद टूट जाती। चिंता में थी मैना, वज्र भैरव की चेतावनी से सशंकित, यदि प्रेतपुर की पंजरा किसी माया क्रीड़ा से भर्तहरि को महाकाल के क्षेत्र से बाहर खींच कर ले गई तो वो संकट में पड़ सकते हैं। अवंती नगर की सीमा में यह उनका कोई अहित नहीं कर सकती, पर कोटे से एक योजन दूर तक जहां जहां महाकाल के घंटे, डमरू, नक्कारे की ध्वनि पहुंचती है, वहां तक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी अनिष्टकारी क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। अशंकित मैना ने महामात्य को बुला भेजा।
1: क्षमा करें महादेवी, किंतु ये जानना आवश्यक है कि महाराज रात में कब तक आपके शयनागार में थे?
2: ब्रह्म मुहूर्त तक तो निश्चय ही, क्योंकि मंदिर का प्रभाती का घंटा बज गया था। उससे पूर्व भी महालय की समय सूचिका की निनाद ध्वनि हो चुकी थी।
1: तब महाराज जागे हुए थे या?
2: हमें लगता है कि वो निद्रा में थे। नंदाश्री मैनावती को हम बता चुके हैं कि वो नींद में जैसे कोई स्वप्न देखते हुए चौक पड़ते थे और उनके मुख से अलग अलग की ध्वनि आती थी, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों, रावण, त्रिकूट, पाणिनि आदि।
1: तो क्या आप चौथे पहर तक सो नहीं पाई?
2: अर्धरात्रि के बाद तक महाराज भी जागते रहे थे महामात्य, और फिर वो सो गए। प्रयास करने पर भी हमें नींद नहीं आई, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख कब झपकी कुछ पता ही नहीं चला। जब दो घड़ी दिन चढ़े, चंपा ने कुमार को हमारे पर्यंग पर छोड़ा, तब उनका रोना सुनकर हमारी नींद खुली। महाराज कक्ष में नहीं थे और हमने ये सोचा कि वो अपने कक्ष में चले गए होंगे, और फिर हम व्यस्त हो गए।
1: कहां जा सकते हैं और क्यों? पुत्री मैनावती, मुझे तुम्हारी पंजरा वाली कथा पर विश्वास नहीं है। मैं ना तो किसी प्रेत से मिला हूं और ना प्रेतों की किसी माया से मेरा सामना हुआ है। यहां के शमशान क्षेत्र में अनेक अघोरी कापालिक रहते हैं, किंतु कुतूहलजनक कछुवेश और विचित्र चेष्टाओं के बाद भी वो मनुष्य हैं। कोई उन्हें बाधा ना दे तो किसी प्रकार का अपकार नहीं करते वो।
3: महामात्य, प्रेतावस्था बहुत त्रासद होती है।

0: निरंतर क्षुधित और सतत प्यासी, भोग और भोजन के लिए बेचैन, सदैव तत्पर, पल भर को शांत और फिर वही विकलता। ये तिमिर धर्मी है, अतः सूर्य के प्रकाश में नितांत निर्बल हो जाती है।
1: पुत्री, हमें अभी आसन्न संकट की ओर देखना है। अवंती का सिंहासन, राज्य और प्रजा एक बार फिर अनिश्चितता से घिर गए हैं। बिना बताए महाराज एक बार फिर निकल गए हैं।
0: आप मुझे ये बताएं कि महाकाल मंदिर से एक योजन से अधिक दूर वाला महसान वो महाभैरव वाला शमशान ही है ना? आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, पंजरा आज निश्चय ही वहां साधना और अभ्यास करेगी। आज वो मानवी बनकर रहेगी। मुझे दो निर्भय, विश्वस्त, बलिष्ठ और कुशल सैनिक चाहिए। नखला, मेखला, कहाँ हो तुम?
2: मैनावती ने अपने साथ आई नखला और मेखला दासियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा,
0: हमें शीघ्र ही भैरव शमशान पहुंचना है। आज रात प्रेतनी पंजरा को मुक्ति देनी है। तुम दोनों सन्नद्ध हो जाओ, उसका जादू और माया तुम दोनों देख ही चुकी हो। हमने उसका भ्रम जाल भस्म कर दिया था, लेकिन वो बचकर निकल गई। अब देखना है वो कैसे बचती है।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 21वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार पदम भंडारी, इंद्र जालिक संजय भोसकर, नटी भारती ठाकुर, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, औघड़ मांगीलाल शर्मा, मैनावती दिव्या पवार, शची विभा श्रीवास्तव, पिंगला कंचन राजानी, चंपा अनुराधा, महामात्य अरशद इकबाल, उत्साही बच्चे आद्या मुंशी, आरोही भट्ट और अक्षता राजन। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेन।

0: आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं और वृक वन होते हुए पैठार पहुंचते हैं। पैठार से चलते हुए वे प्रेतपुरी पहुंचते हैं, जहां पंजरा उन्हें रोकती है। राजा उसका आशय समझकर वहां से भाग लेते हैं। बंग देश से आती हुई मैनावती का भी प्रेतपुरी से निकलना हुआ था। मैनावती भ्रमरी विद्या की कूट ज्ञाता हैं। मैनावती ने पंजरा का जाल काट दिया और प्रेतपुरी को नष्ट कर दिया। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई पंजरा का क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले भाग में।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक कामनी का एकांतरे की 21वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: इस घंटे की खास खबरें। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित की जा रही है। चार दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए महिला सभा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
2: सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए वंदना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, सावन मास शुरू हो चुका है। सावन के आते ही सुनाई देती है आहट तीज त्योहारों की। कहीं चूड़ियों की खनखन तो कहीं पायल की छनछन, कहीं ओढ़नी की सरसराहट तो कहीं झूला झूलती सहेलियों की खिलखिलाहट। बारिश में हर ओर हरियाली दिखाई देती है। यूं लगता है कि ये बेलें नहा धोकर आई हैं इन वृक्षों से गले मिलने। नदियां चल पड़ी हैं अपने सफर पर बलखाती इठलाती हुई। यूं प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं अपना श्रृंगार करती है। बूंद बूंद में उतरा सावन, झरनों नदियों में आई बहार, धरती चली अंबर से मिलने करके हरियाली का श्रृंगार। सखियों, सावन की झड़ी कुछ समय में बंद हो जाएगी, पर त्योहारों की जो लड़ी शुरू हो गई तो ये चलती रहेगी चतुर्मास तक। सावन में कोई सोमवार व्रत करता है, कोई पूरे माह शिव को फल फूल जल दूध गंगा जल बेलपत्र आदि अर्पित करता है, यानी भोले बाबा का रुद्र अभिषेक जल अभिषेक होता है। सावन शब्द मन को जोड़ जाता है राखी के त्यौहार से, जहां बचपन की यादें हैं, भाई बहनों की मान मनुहार है, कृष्ण जन्माष्टमी पर रिश्तों का सम्मान है, तो हरियाली तीज पर त्याग और समर्पण है, नवरात्रि में है शक्ति का पर्व। सखियों, बरसात के ये चार महीने चतुर्मास कहलाते हैं। इसी चतुर्मास में कई संत जन चार महीनों तक एक ही स्थान पर निवास करते हैं और कई संत जन एक समय भोजन करते हैं, ताकि उनके आवागमन से किसी जीव जंतु को क्षति ना पहुँचे। हम भी देखते हैं ना सखियों कि तेज बारिश के बाद धरती से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं। यूं लगता है कि अपने आराध्य शिव से मिलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चार महीने प्रकृति का कार्यभार शिव ही संभालते हैं और शिव का दूसरा नाम पशुपति नाथ है, यानी वे सभी पशु पक्षियों जीवों के रखवाले हैं। बहनों, झूले झूलती सखियां, मेहंदी रचे हाथ और उनकी खन खन खनकती हरी हरी चूड़ियां, ये नज़ारा पहले हर ओर दिखाई देता था। माना कि अब इस चित्र में उतनी गहराई नहीं रह गई, फिर भी परिदृश्य तो वही है। हम महिलाओं का सावन में हरियाली तो आज भी कायम है। सखियों, आप अपना सावन कैसे मनाएंगी? हमारी कॉलोनी में तो आज भी हम सब महिलाएं मिलकर मेहंदी रचाती हैं, गाना बजाना करती हैं, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय की हों। समय की कमी के चलते अब हर कोई तो पीहर नहीं जा पाता, तो माँ की याद में छलके आंसू।

पोंछे जाते हैं सहेलियों के रुमालों से। गहरी काली घटाएं डुबो देती हैं अतीत में, ठंडी ठंडी हवाएं याद दिलाती हैं उनकी जो हमसे दूर।

0: स्तनपान की महत्ता को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, स्तनपान महत्व एवं सावधानियां। डॉक्टर यशोधरा गौर से बातचीत कर रही हैं वंदना शर्मा। सखियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशोधरा गौर, जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय व कमला राजा अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी केंद्र में।
1: धन्यवाद
0: मैम। स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है?
1: स्तनपान सप्ताह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कॉल पर मनाया जाता है
0: जी,
1: अगस्त के प्रथम सप्ताह में, और इसका उद्देश्य लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। हमारे देश में स्तनपान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हमारी दादी नानी ये सभी स्तनपान

0: कराती थी तो लड़कियां देखती हैं तो वो स्वतः ही स्तनपान की तरफ चली जाती हैं, जबकि पश्चिमी देशों में इस तरह का रस्म रिवाज नहीं देखा गया है। कुछ समय पहले स्तनपान की स्थिति उनके यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, तो WHO ने जब ये कॉल दिया तो उनका उद्देश्य ये था, एक तो महिलाओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता हो, और स्तनपान के जब फायदे उनको पता चलेंगे तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा फीड कराएंगी, और इसके साथ ही एक पब्लिक अवेयरनेस भी आएगी सामने कि स्तनपान देने से या ब्रेस्ट मिल्क से कितने कितने फ़ायदे हैं। तो उन जैसे जब फायदे सामने आते हैं तो लोग उनको स्वीकृत करते
1: जी
0: हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही ये मेटर्निटी को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाना जरूरी है, और इस वजह से अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 6 मंथ की मेटर्निटी लीव सभी विभागों में स्वीकृत की है। कई NGOs हैं जो कि इस सप्ताह को बहुत अच्छे से मनाती हैं, साथ ही जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग के अलग से क्यूबिकल्स तैयार किए जाते हैं या एक स्पेस आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पर बैठ करके महिला जो है वो स्तनपान करा सकती है। अब लोग इसको आदर की दृष्टि से देखते हैं जो कि आवश्यक है।
1: तो मैम आपसे सवाल यही है जो सामान्य सवाल है कि बच्चे को स्तनपान कब से शुरू कर सकते हैं?
0: बच्चे को स्तनपान जन्म के तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं। अभी जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो तुरंत उसे माँ के स्तन से लगा दिया जाता है। जितनी जल्दी ये स्तनपान शुरू करते हैं, इस प्रक्रिया का फायदा ये है कि जैसे ही बच्चा स्तनपान करता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चेदानी को सिकोड़ने का कार्य करते हैं। तो जितना शीघ्र अति शीघ्र हम प्रारंभ कर सकें स्तनपान, वो बच्चे और माँ दोनों के लिए फायदेमंद है।
1: यानी पहली बार जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो ये माँ के स्वास्थ्य के वो भी बेहतर करता है।
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ चाहे तो बच्चे को 2 साल तक स्तनपान करवा सकती है, और हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कम से कम 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चा केवल माँ के जो मिल्क सिक्रीशन है उसी पर आधारित रहता है, उसको कोई भी ऊपर का किसी भी तरह का पानी या जूस या इस तरह की कोई भी न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं दी जाती हैं।
1: जी, यानी माँ के स्तन से पर्याप्त दूध अगर बच्चे को मिल रहा है तो ये बहुत बेहतर होता है।
0: ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि अगर माँ का जो सिक्रीशन है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन पर्याप्त है तो बच्चे को पहले 6 मंथ तक पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती है।
1: स्तनपान के क्या फायदे हैं और इसको न कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: स्तनपान के बहुत फायदे हैं, दोनों ही माँ और बच्चे दोनों के लिए ही फायदेमंद है स्तनपान। सबसे पहले बच्चे में अगर हम देखते हैं तो बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है बीमारियों से लड़ने की, जैसे कि उल्टी दस्त वगैरह हैं, तो उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, तो उनकी वजह से बच्चे को इन बीमारियों से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। दूसरा, जितने भी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता रहती है बच्चे को वो सभी ब्रेस्ट मिल्क में उपलब्ध रहते हैं। तीसरा बहुत अच्छा रीज़न ये है कि बच्चा जो है दूसरे इन्फेक्शन जो ऊपर का दूध पी रहे हैं या कहीं और का दूध पीते हैं तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो स्तनपान में बिल्कुल नहीं रहता है।
1: मतलब बाहर से उसको किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं रहती है।
0: आशंका बहुत कम हो जाती है।
1: जी, कहा जाता है कि स्तनपान न कराने वाली माओं को कैंसर की आशंका बढ़ जाती है।
0: स्तनपान जब कराती है माँ बच्चे को तो शरीर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है।
1: जी
0: ये प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो है बच्चे के लिए दूध बनाने का कार्य ग्लैंड्स में करवाता है। जब बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल हाई रहते हैं तो ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को कम करते हैं। अंडाशय में से अंडा बनना, प्रेगनेंसी होना, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जब बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक रहता है तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम रहते हैं, और एक तरह से एनोविलेट्री मतलब महिला में अंडा बनने की स्थिति नहीं आती है। या जैसे अगर 1 वर्ष तक उन्होंने स्तनपान कराया तो 1 वर्ष तक अंडा बनने की स्थिति नहीं आएगी, तो इस वजह से इपिथीलियल ओवेरियन कैंसर जो ओवरी के कैंसर होते हैं, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर,

0: सर उनकी संभावना कम हो जाती है।
1: यानी ये माँ की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
0: हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं।
1: नई माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि स्तनपान बहुत फायदेमंद है। आप ये ना सोचें कि आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी, आपकी सुंदरता और बढ़ेगी ही। आप गर्भ स्थिति आने के पहले की जिस तरह का आपका शरीर था उसको वापस लाने में स्तनपान आपकी सहायता करता है। और इसके साथ ही आप जिस बच्चे की माँ हैं वो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास सभी कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता है अगर आप उसको स्तनपान कराती हैं। कोशिश करें कि स्तनपान कम से कम 6 मंथ तो कराना ही है और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं एडिशनल सप्लीमेंट्स के साथ में 2 वर्ष तक।
1: मैम जिन माँ का ऑपरेशन हुआ है वे कितने समय बाद स्तनपान करा सकती हैं?
0: अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो ऑपरेशन करते समय ही, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो बच्चे को माँ के पेट पर लिटा करके ऑपरेशन के दौरान ही हम स्तन से लगा सकते हैं
1: जी।
0: ये कहने का मतलब ये है कि कोई डिले नहीं।
1: यदि किसी महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ पा रहा तो फिर इस स्थिति में क्या किया जाता है?
0: अगर किसी महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ऑपरेशन डिलीवरी एक इसका मुख्य कारण है, क्योंकि महिला जो है वो को थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहती है, असुविधाजनक रहती है स्थिति में, कई बार टेंशन की, स्ट्रेस की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो इसी स्थिति में हमें महिलाओं को ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि किसी तरह की कमी है, उसको इनकरेज करते हैं हम लोग कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, जैसे दूध पिलाना है उसको, हाई प्रोटीन डाइट देना है, हाई फैट डाइट देना है। और ऐसा सब देने के बाद में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मिल्क सिक्रीशन इस्टेब्लिश हो जाता है।
1: मैम आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने माताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी स्तनपान के संदर्भ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, स्तनपान महत्व एवं सावधानियां। डॉक्टर यशोधरा गौर से बातचीत कर रही थी वंदना शर्मा। सखियों बारिश का मौसम सुहावना होता है पर ये बरसात अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आती है, जैसे घर में सीलन की समस्या। घर में यदि सीलन लंबे समय तक टिक जाए तो घर में बदबू फैल सकती है। दीवारों का प्लास्टर झड़ने लगता है क्योंकि लंबे समय तक सीलन के रहने से फंगस डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है, तो बीमारियों का भी खतरा रहता है। यदि घर में हवा का आना जाना पर्याप्त नहीं है तो दीमक भी अपना प्रभाव दिखाती है, तो कोशिश करें कि घर सीलन से कम प्रभावित हो। यदि आपके घर में भी बाथरूम, किचन, स्टोर रूम आदि में सीलन आ रही है तो सबसे पहले चेक करें लीकेज, यानी कहीं पानी का लीकेज तो नहीं हो रहा या कोई नल खराब तो नहीं। साथ ही दीवारों की दरारों को देखें, टाइल्स के बीच में गैप को भी चेक करना होगा, तभी हम सीलन की जड़ को ढूंढ पाएंगे। इसके लिए बाहरी दीवारों में छत पर अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ सॉल्यूशन लगवाएं जो लंबे समय तक नमी को अवशोषित करता रहे। यदि दीवारों में कहीं दरारें हैं तो उन्हें क्रैक फिलर से भर सकते हैं। रसोई घर और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं जिससे वहां की नमी बाहर निकलती रहे। जब बरसात नहीं हो रही तो घर के खिड़की दरवाजे खोल दें जिससे पर्याप्त हवा और धूप आ सके। सखियों यदि कपड़ों की अलमारी में सीलन महसूस हो तो कुछ चौक या कोयले के टुकड़े लेकर उन्हें अलमारी में रख दें, ये नमी को सोखते हैं। घर में सिरके का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ों को ड्रायर में सुखाकर ही फैलाएं। कपूर जला सकते हैं, कपूर जलाने से घर में सकारात्मकता भी बढ़ती है, खुशबू भी आती है। सखियों साफ स्वच्छ घर सभी को भाता है और इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है।

बहनों, आज हम विकासशील भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने सपने सजाने के लिए। भारत को आज की स्थिति तक आने में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा।

0: गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आकाश में तिरंगा लहराने का जो सपना हर भारतीय ने सजाया था और अपने अपने हिस्से का संघर्ष भी किया था। इसी कड़ी में एक सम्माननीय नाम है स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपीनाथ बारडोलाई का। गोपीनाथ बारडोलाई का जन्म 6 जून 1890 को आसाम में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उनका जन्म स्थान असम था तो कर्म स्थान भी वहीं रहा। उन्होंने असम के विकास के लिए सतत प्रयास किया। आज़ादी के बाद वे असम के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। उनके संघर्ष का एक पड़ाव था कैबिनेट मिशन योजना का विरोध, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर को भारत से अलग किया जा रहा था। वे लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि असम भारत का हिस्सा बना रहे। भारत की अखंडता को कायम रखने में आपके योगदान को देखते हुए आपको सन 1999 में मृत्यु पश्चात भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बारडोलाई कुशल राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सेवी और इन सबसे कहीं ऊपर देश प्रेमी थे। आज 5 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। क्यों बातों ही बातों में कार्यक्रम का समय हो चला समाप्त, तो सावन की फुहारों का आनंद लीजिए अपनी सखी सहेलियों के साथ और अब की वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है संदेशों का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8

5:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए वर्षा गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए नीलम शर्मा के गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है जख्म फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है MM क्रीम ने।

और अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में सोल्जर फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि चालकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपनी लेन में वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण व्यवधान आया। विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

0: मांग कर रहा है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सर्वे भविंतु सुखिना रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। सम्मेलन के दौरान भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 5 बजे से 7 बजे तक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। आम जनता के लिए इसमें प्रवेश मुफ्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय और उन लोगों को उनके अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया।
1: मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए, लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्सो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए AI का उपयोग करना चाहिए, लेकिन AI का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है।
0: मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद और शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वयं जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों व समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मुकाबले में महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप आमने सामने होंगी। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल संभागों में अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील अवैध रूप से चल रही आराम मशीनों के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी की। जबलपुर कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम जिले के टारसी के कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत की शरानी बरुआ तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले सात वर्षो में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
3: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
2: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
4: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
2: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
5: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
6: After a detailed assessment of the evolving
5: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का

0: निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: Headline inflation has edged up.
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: Real GDP growth for this year.
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
5: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सबने सुनना चाहा है सनम फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक को। इस गीत की फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने।

परदेसी बाबू। लीजिए सुनिए इस फिल्म से उदित नारायण, प्रीति उत्तम सिंह, अल्ताफ राजा, रामकिशन और जितेंद्र पूनम को। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

राजा हिंदुस्तानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म से कुमार सानू, अलीशा चुनाय और सपना मुखर्जी को। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तान्या, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:30। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मनोज तरवारिया से ली गई भेंटवार्ता, विषय है सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन। संसद समीक्षा आप सुन सकेंगे रात 8:00, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा नाटक एक शक झूठ हजार, लेखक राजकुमार जायसवाल और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे डागर बंधु का ध्रुपद गायन, राखों का दरबारी कानड़ा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए सावन गीत और वर्षा गीत।

जगदीश प्रसाद और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नीलम शर्मा के गाए भजन।

0: नीरम शर्मा के गायज भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
4: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत, हम आपके दिल में रहते हैं। ये पहला गीत है इस फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें, समीर का गीत है और अनु मलिक का संगीत।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत।

जीन्स फिल्म से सुनिए उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को। जावेद अख्तर का गीत है और ए आर रहमान का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा करीब फिल्म से रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें, राहत इंदौरी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। ब्रिस्क सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के तुलसी शोध संस्थान द्वारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कल अलंकरण समारोह में पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार लेखक और राष्ट्रचिंतक राम बहादुर राय को प्रदान किया जाएगा। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 21वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 21वां भाग। अब तक आपने सुना कि महामात्य ने बंगदेश से भर्तृहरि की बहन मैनावती को बुलाया है। राजा को क्या चिंता है, शायद अपनी बहन को वे उद्विग्नता के बारे में बता सकें। उज्जैनी में बसंतोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें एक इंद्रजालिक अपने जादू का प्रदर्शन करता है। अब आगे

0: अवंती में बसंतोत्सव हो रहा है। दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराज पधारे हैं। उद्घोषक ने कहा था कि वो अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः केवल एक कार्यक्रम होगा। इसलिए हास्य के बाद अब इंद्रजाल का कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत होता है। ये अंतिम कार्यक्रम है।
1: महाराज की जय हो। सुरुचि संपन्न दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये स्मरण करवाना चाहता हूं

कि काल के आगे कोई भी इंद्रजाल नहीं ठहरता। फिर ये तो साक्षात महाकाल की भूमि है। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि यदि कोई इंद्रजाल का ज्ञाता हो तो वो मेरे इस खेला को मात्र एक क्रीड़ा समझकर मुदित हो ले। ये खेला कौशल भी है और साधना भी, साचा भी है और कृत्रिम भी, और हाँ ये माया भी।

0: भ्रम का प्रपंच है।
1: अब होगा अच्छा खेल। हाँ मित्र, हाँ मैं भी यही समझता हूँ।
0: बंधु भगिनियों, आज राजा धीराज अवंती नरेश महाराजा भर्तृहरि के सम्मुख मुझे अपने कौशल को प्रदर्शित करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं वो कौतुक गढ़ रहा हूँ जो कभी मेरे पूर्वजों ने अनिंद सुंदरी वासव दत्ता के वियोग से पीड़ित वत्सराज उदयन को दिखाया था।
1: हाँ, दिखाया था। हाँ, हाँ, दिखाया था।
0: अब बताइए श्रीमान, क्या दिखाऊं? भूमि के अंक में उपस्थित चंद्रमा, आकाश में डोलते हुए पर्वत, जल के बीच प्रज्वलित अग्नि, या मध्यान्ह के समय की अर्धरात्रि? अपनी बढ़ाई अपने आप क्या करूं, आप जो भी देखना चाहे वही प्रस्तुत कर सकता हूं। सर्वप्रथम मैं एकांत की सृष्टि करता हूं। सावधान होकर किसी एक दृश्य को चुन ले, दो चुन ले, या अधिक से अधिक तीन। इसके लिए आपके पास 3 पल का समय है। 9 श्वास, 13 धड़कने। प्रिये?
2: हाँ स्वामी, मैं यही हूँ।
0: प्रिये, नरेश की क्या इच्छा है?
2: स्वामी, नरेश सर्वप्रथम तुम्हारे कथन का प्रमाण चाहते हैं।
0: तो ऐसा ही हो।
1: अद्भुत, वो देखो आकाश में वो कमल स्थित ब्रह्मा,
3: कमल स्थित ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को देखो, देखो, देखो, देखो, देखो।
1: और चंद्र को मस्तक पर धारण किए चंद्रमौली शिव वहाँ है,
4: और वो रहे
1: शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। उधर है गजराज ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र और नृत्य करती अप्सराएं।
2: भद्रजनों, आप में से कोई अपने किसी प्रिय का दर्शन करना चाहता है? कोई ऐसा है जो आपके निकट नहीं है, जिसे देखे लंबा समय बीत गया है, जिसकी स्मृतियां आपको आवेशित कर रही हैं, जिसे देखने की उत्कट इच्छा है आपकी?
1: क्या दिखाएगी ये? क्या दिखाएगी ये?
0: तो दृष्टि को भ्रू और नासिका के मध्य भ्रिकटी पर लाकर अपने उस प्रिय का स्मरण करे। 3 पल, 9 श्वास, 13 धड़कने।
5: राजा भर्तृहरि क्या देख रहे हैं? शची, शची, शची, शची, चारु मित्र, शची, चारु मित्र, शची।
6: अरे अरे अरे, देखिए देखिए, अरे आश्चर्य, ये कंठा कमंडलधारी अवधूत कौन है?
7: अरे जो रक्षकों को धकेलता हुआ मंच स्थल तक आ पहुंचा है, कौन है?
1: कौन है? कौन है वो?
5: महाराज, महाराज आप?
6: महाराज तो तुम हो भर्तृहरि। गोरख, गोरख,
5: पधारे, पधारे महाराज, आसन ग्रहण करें, सेवक को आज्ञा दे, किस योग्य हूं मैं?
6: मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए राजा, मैं तो तुझे याद दिलाने आया हूं। कामिनी कंचन काया और माया।
5: महाराज, ये दैनिक व्यवहार है, काया के भी धर्म है।
6: काया के भी धर्म है, गोरख, गोरख।
5: आ आप मुझे नदी के तीर पर छोड़ गए थे। उस नदी को मैंने सांसारिक नाव से पार किया। अभी भी देख रहा हूं कि आगे क्या होता है। मैं अभी भी इसी द्वंद में भटक रहा हूं महाराज, कि क्या प्रामाणिक ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष और अनुमान मनुष्य के धर्म का ज्ञान करवाने में सक्षम है? गुरु के उपदेश का माध्यम शब्द है, तो शब्द की सत्ता क्या है? मैं इस उलझन को ना तो समझ पा रहा हूं और ना ही व्यक्त कर पा रहा हूं।
6: राजा, तो तू गुरु की कृपा पाने का यत्न कर, यत्न। माया के जाल से बाहर निकल कर देख। सब कुछ न सही, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा।
5: गुरु कहां मिलेंगे?
6: वो या तो स्वयं ही तुझ तक पहुंचेंगे या तुझे उनकी खोज करनी होगी।
4: कौन है रे तू जो रंग में भंग कर रहा है? तू साहसी?
6: हाँ, अपने गुरु का ध्यान कर, ध्यान कर, जान जाएगी। अलक अलक बोल, गोरख गोरख जय हो। प्रेतपुर को तो तूने मिटा दिया। तो अब संसार का फंदा मेट के दिखा, दिखा। गोरख गोरख।
4: ओ, तो तुम गोरखनाथ की शिष्य हो?
6: और तुम जालंधरनाथ की?
4: नहीं, मैं जालिपा गुरु की शिष्या नहीं, शिष्या तुल्य हूं। वो मेरे पूज्य हैं, मैंने उनसे तंत्र और रसायन विद्या सीखी है। ओघड़ हट योग से मनुष्य शरीर को जीत सकता है, किंतु परम गुरु को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि जानने वाला संसार से अलग नहीं है। संसार यदि माया है तो जानने वाला भी उसी माया का लघुत्तम अंग है। लघुत्तम से गुरु होना इस समूचे सृष्टि प्रपंच से ऊपर उठ जाना है।
6: अलग, अलग।
4: मैं वो शक्ति अर्जित नहीं कर पाई। राजा भृतहरि तो गुरु के पास तब भी नहीं पहुंचा। ओकर, तुम इस वसंती मेले में कैसे आए?
6: योग माता, ये स्मरण दिलाने के लिए कि राजा भृतहरि केवल अवंती के लिए नहीं है।
4: प्रजा को राजा की आवश्यकता है। अपना नाम नहीं बतलाया ओघड़ तुमने? गुरु महाराज।

0: मोर के साथ अभी जीवित है। प्रतिशोध की आग में दहकती हुई तुम उसका जाल तोड़कर निकल आए। तुम्हारी बहन ने जाल को जला दिया। बहुत क्रोध में है वो आक्रमण करेगी। सावधान रहना, सावधान।
1: श्रावण मास के प्रारंभ में राजा भर्तृहरि पैठार गांव जाकर शची को अपने साथ उज्जैनी ले आए। नई रानी के रूप में प्रजा ने शची का परिचय

0: तब पाया जब वो राजा की रानी बनकर महाकाल की अर्चना और आरती के लिए गई। पैठार में शची का जीवन सहज था, उसे सभी कुछ सरलता से समझ में आ जाता था, किंतु यहां इस राजमहल में वो हर क्षण चकित विस्मयित होती रहती थी। पैठार में सब कुछ उन्मुक्त और खुला खुला अपने वश में।
1: शची, कोई अभाव, कोई असुविधा तो नहीं?
2: नहीं देव, यहां असुविधा का प्रवेश ही नहीं है।
1: किंतु तुम्हारे मुख पर पैठार जैसी उत्फुल्लता नहीं मिलती।
2: देव, वहां मुझे हर समय कुछ करने को रहता था। कार्य करते रहने के बदले मैं प्रसन्नता मिलती है। शायद आप इसी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं।
1: हाँ, कदाचित यही उत्फुल्लता हो।
2: अभी मुझसे छूट नहीं पा रहा है।
1: तो फिर ऐसा करो, हम दोनों तुम्हारे वनांचल की ओर चलते हैं। कदाचित वहां मैं कुछ नया जान या सोच सकूं। पीपल के पत्ते की तरह दोलायमान मेरे विचार कहीं स्थिर हो सके। शची
2: महाराज, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सभी आपकी ही ओर देखते हैं।
1: प्रजा को सुख संतोष देना चाहता हूं, पर इस समय मैं स्वयं ही उद्विग्न हूं। चलो चलते हैं।
3: पधारिए महाराज, पिंगला आपका स्वागत करती है।
4: महादेवी, मैं राजकुमार को लेकर बाहर जाती हूँ।
1: ठहरो चंपा।
4: जी।
1: आज हम साथ रहना चाहते हैं।
4: देव की आज्ञा दासी ने सदैव कृपा मानकर सही जी है, किंतु
1: महारानी, चंपा तुम्हारी अनुमति से भर्तृहरि की अंकशायिनी बनती रही है, इच्छा से या अनिच्छा से भी, या फिर कहूं कि इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं रही। हो भी तो उसका धर्म। महादेवी, आज इसे साथ रहने का अवसर देंगी तो मुझे सुख मिलेगा, और वयसिका वो भी साथ रहे तो।
3: चंपा
4: जी,
3: तुम ठहरो और वयसिका को भी बुला लाओ।
4: जी अच्छा।
3: महाराज की इच्छा आज्ञा के अनुसार। बैठो तुम दोनों यहीं, ये रानी वास है, यहां हमारी आज्ञा चलती है। हम आज भी अब तक महारानी हैं। महाराज, हमारा सिर काट दीजिए, गजपथ के नीचे कुचल जाने का दंड दीजिए आप हमें, क्षिप्रा में डुबोइए, किंतु आपसे उपेक्षित होकर अब जीना संभव नहीं है। महाराज, हमारे होने या न होने से कहीं कोई अपशय नहीं होगा। महाराज, आप हैं तो सब रहेगा। कुमार को चंपा पाल लेगी और हम वैसिका से वचन ले लेंगे कि वो यहां पर रहकर हम पर उपकार करे। यही शची है जो आपके प्रति अकुंठ मन से समर्पित है। बस इनके समक्ष हमारा अपराध बता दीजिए। हम आपसे अपराध का प्रमाण नहीं मांगेंगे और किसी भी स्त्री को अपने पति से प्रमाण नहीं मांगना चाहिए। किंतु बता दीजिए राजन, और हमें उस अपराध के लिए मृत्यु दे दीजिए, या फिर हम ही चुन लेते हैं। महाराज, प्रातः आप हमारा जीवित मुख नहीं देखेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं।
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महारानी।
4: हाँ देव, नरेश हैं आप,

0: अभी इसी क्षण आप हमें बंदी बना सकते हैं, आसपास परिरक्षक नियुक्त कर सकते हैं जो हमें मरने भी नहीं देंगे। हमारे वश में न जीवन है और न मृत्यु।
1: महादेवी, अभी अभी तो आप कह रही थी कि यहां आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, यहां की शासिका आप हैं, ये मैं भी भली भांति जानता हूं। अब आप सामान्य हो जाइए, ये सब भूलकर। मैं स्वीकार करता हूं महारानी कि तुम्हारे उस व्यापार व्यवहार से मेरा पुरुष दंभ आहत हुआ था, मैं क्रुद्ध था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि पुरुष की स्वेच्छाचारिता से खिन्न स्त्री पर भी तो इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। पिंगला, मैं समझ रहा हूं और उस घटनाक्रम को भुला रहा हूं। विश्वास करो, हाँ विश्वास करो। पिंगला, मैंने उपहार में तुम्हें दिया था वो विचित्र फल, उसके पीछे मेरी प्रच्छन्न लालसा थी कि तुम्हारे सौंदर्य में और अभिवृद्धि हो, वो स्थायी हो, ताकि मैं जीवन भर उसका उपभोग कर सकूं। तुमने उस फल को किसी और को दे दिया, उसे जिस पर तुम प्रसन्न थी। कौन जाने इस घटना में महाकाल की कौन सी इच्छा निहित थी। मैं आज शची को साथ लेकर अपने द्वंद के उपशमन में लगा था।
0: देव, रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्ति पर है और आपने अभी तक भोजन नहीं किया।
1: तुम सबने भी तो ग्रहण नहीं किया है। इस देह में हम काल के जाल और भूख प्यास के आग से मुक्त भी नहीं हो सकते। भोजन आरंभ करो सब। और हां शची, आज की ये रात हम महारानी के कक्ष में व्यतीत करना चाहते हैं।
0: चलो वैसिका, और चंपा तुम भी महाराज को विश्राम करने दे।
2: जी ठीक है।

0: भर्तारी फिर राजप्रसाद को छोड़कर कहीं निकल गए हैं, किसी को कुछ भी बताए बिना। कहां किस ओर गए हैं कोई नहीं जानता। उस रात वो रानी पिंगला के शयनागार में थे और पिंगला केवल इतना ही बता पा रही थी कि उन्होंने नींद में राजा को बुदबुदाते हुए सुना था, रावण, त्रिकूट, पाणिनी, चंदाचार्य, परंपरा, शब्द, गुरु। वो कई बार अलख अलख कहते और उनकी नींद टूट जाती। चिंता में थी मैना, वज्र भैरव की चेतावनी से सशंकित, यदि प्रेतपुर की पंजरा किसी माया क्रीड़ा से भर्तहरि को महाकाल के क्षेत्र से बाहर खींच कर ले गई तो वो संकट में पड़ सकते हैं। अवंती नगर की सीमा में यह उनका कोई अहित नहीं कर सकती, पर कोटे से एक योजन दूर तक जहां जहां महाकाल के घंटे, डमरू, नक्कारे की ध्वनि पहुंचती है, वहां तक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी अनिष्टकारी क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। अशंकित मैना ने महामात्य को बुला भेजा।
1: क्षमा करें महादेवी, किंतु ये जानना आवश्यक है कि महाराज रात में कब तक आपके शयनागार में थे।
2: ब्रह्म मुहूर्त तक तो निश्चय ही, क्योंकि मंदिर का प्रभाती का घंटा बज गया था। उससे पूर्व भी महालय की समय सूचिका की निनाद ध्वनि हो चुकी थी।
1: तब महाराज जागे हुए थे या?
2: हमें लगता है कि वो निद्रा में थे। नंदाश्री मैनावती को हम बता चुके हैं कि वो नींद में जैसे कोई स्वप्न देखते हुए चौक पड़ते थे और उनके मुख से अलग अलग की ध्वनि आती थी, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों, रावण, त्रिकूट, पाणिनी आदि।
1: तो क्या आप चौथे पहर तक सो नहीं पाई?
2: अर्धरात्रि के बाद तक महाराज भी जागते रहे थे महामात्य, और फिर वो सो गए। प्रयास करने पर भी हमें नींद नहीं आई, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख कब झपकी कुछ पता ही नहीं चला। जब दो घड़ी दिन चढ़े, चंपा ने कुमार को हमारे पर्यंग पर छोड़ा, तब उनका रोना सुनकर हमारी नींद खुली। महाराज कक्ष में नहीं थे और हमने ये सोचा कि वो अपने कक्ष में चले गए होंगे, और फिर हम व्यस्त हो गए।
1: कहां जा सकते हैं और क्यों? पुत्री मैनावती, मुझे तुम्हारी पंजरा वाली कथा पर विश्वास नहीं है। मैं ना तो किसी प्रेत से मिला हूं और ना प्रेतों की किसी माया से मेरा सामना हुआ है। यहां के शमशान क्षेत्र में अनेक अघोरी कापालिक रहते हैं, किंतु कुतूहलजनक कच्छ वेश और विचित्र चेष्टाओं के बाद भी वो मनुष्य हैं। कोई उन्हें बाधा ना दे तो किसी प्रकार का अपकार नहीं करते वो।
3: महामात्य, प्रेतावस्था बहुत त्रासद होती है। निरंतर क्षुधित और सतत प्यासी, भोग और भोजन के लिए बेचैन, सदैव तत्पर, पल भर को शांत और फिर वही विकलता। ये तिमिर धर्मी है, अतः सूर्य के प्रकाश में नितांत निर्बल हो जाती है।
1: पुत्री, हमें अभी आसन्न संकट की ओर देखना है। अवंती का सिंहासन, राज्य और प्रजा एक बार फिर अनिश्चितता से घिर गए हैं। बिना बताए महाराज एक बार फिर निकल गए हैं।
3: आप मुझे ये बताएं कि महाकाल मंदिर से एक योजन से अधिक दूर वाला महसान वो महाभैरव वाला शमशान ही है ना? आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, पंजरा आज निश्चय ही वहां साधना और अभ्यास करेगी। आज वो मानवीय बनकर रहेगी। मुझे दो निर्भय, विश्वस्त, बलिष्ठ और कुशल सैनिक चाहिए। नखला, मेखला, कहाँ हो तुम?
0: मैनावती ने अपने साथ आई नखला और मेखला दासियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा,
3: हमें शीघ्र ही भैरव शमशान पहुंचना है। आज रात प्रेतनी पंजरा को मुक्ति देनी है। तुम दोनों सन्नद्ध हो जाओ। उसका जादू और माया तुम दोनों देख ही चुकी हो। हमने उसका भ्रम जाल भस्म कर दिया था, लेकिन वो बचकर निकल गई। अब देखना है वो कैसे बचती है।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 21वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पदम भंडारी, इंद्र

0: जालिक, संजय भोसकर, नटी भारती ठाकुर, भर्तृहरि, अरविंद बिलगैया, औघड़ मांगीलाल शर्मा, मैनावती दिव्या पवार, शचि विभा श्रीवास्तव, पिंगला कंचन राजानी, चंपा अनुराधा, महामात्य अर्शद इकबाल, उत्साही बच्चे आद्या मुंशी, आरोही भट्ट और अक्षिता राजन। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं और वृक वन होते हुए पैठार पहुंचते हैं। पैठार से चलते हुए वे प्रेतपुरी पहुंचते हैं, जहां पंजरा उन्हें रोकती है। राजा उसका आशय समझकर वहां से भाग लेते हैं।
1: संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने कामनी काय कांतारे धारावाहिक का 21वां भाग सुना। डीटीएच के ओडी चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर, अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें टेलीग्राम जैसे मंचों के माध्यम से फिल्मों का अवैध प्रसार भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के तुलसी शोध संस्थान द्वारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कल अलंकरण समारोह में पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार लेखक और राष्ट्र चिंतक राम बहादुर राय को प्रदान किया जाएगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांची वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान ग्वालियर केंद्र का है।

हमारे युववाणी कार्यक्रम के सभी साथियों को उमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और अब लीजिए फिर से युववाणी का नाम, और अब प्रस्तुत है एक और रंग भरी शाम। आज का प्रस्तुतीकरण समर्पित है युवाओं के नाम। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारा आज बल्कि आने वाले कल में हमारे जीवन की दिशा तय करेगा। साथियों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सालों पहले तक जिन कामों को करने में हमें घंटों या कई दिनों का समय लगता था, आज वही काम AI की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। डिजिटल भुगतान, खेती में आधुनिक तकनीक और शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग, ये सभी AI के ही तो उदाहरण हैं। अब साथियों, प्रश्न ये उठता है कि आखिर AI है क्या? सरल शब्दों में कहें तो साथियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे हम इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें, निर्णय ले सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। या हम कह सकते हैं कि मशीनों को बुद्धिमान बनाने की प्रक्रिया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कहलाती है। साथियों, आज का युवा ज़्यादातर तकनीकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए AI का असर सबसे ज़्यादा युवाओं पर ही पड़ने वाला है। शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, AI आधारित ऐप्स और डिजिटल टूल्स की मदद से अपनी पढ़ाई को अधिक आसान और प्रभावी बना रहे हैं। किसी भी कठिन टॉपिक को समझना हो या नई भाषाएं सीखना हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो, ये सब पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा सरल हो गया है। इतना ही नहीं साथियों, रोज़गार के क्षेत्र में भी AI तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि युवा समय के साथ नई नई तकनीकों को सीखेंगे और अपने कौशल यानी स्किल्स को विकास करेंगे तो उनके लिए अवसरों की कमी नहीं होगी। लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है साथियों कि AI के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियों का रूप बदल सकता है। ऐसे काम जिन्हें मशीनें आसानी से कर सकती हैं, उनमें मानवीय श्रम की ज़रूरतें कम हो सकती हैं। इसलिए आज का दौर यही सिखाता है कि सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए निरंतर सीखने की आदत विकसित करनी होगी। साथियों, हर तकनीक की तरह AI का भी दूसरा पक्ष है। यदि इसका गलत उपयोग किया जाए तो फेक न्यूज़, डीप फेक वीडियो, साइबर अपराध, डेटा चोरी और गोपनीयता का उल्लंघन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर जानकारी सच नहीं होती, इसलिए युवाओं को तकनीक का उपयोग करते समय सजग, जिम्मेदार और नैतिक बनना होगा। एक और बात ज़रूरी ये है साथियों कि AI कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, ये कभी भी मानवीय मूल्यों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि मशीनें गणना कर सकती हैं लेकिन करुणा नहीं दिखा सकती। ये उत्तर दे सकती हैं लेकिन रिश्ते नहीं बना सकती। इसलिए एक बेहतर युवा वही बन सकता है जो तकनीक के साथ साथ अपने मानवीय गुणों को भी विकसित करे। साथियों, आज भारत विश्व में डिजिटल परिवर्तन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि भारत का युवा AI जैसी तकनीकों का सही उपयोग करता है तो वह न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएगा बल्कि देश को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा। साथियों, हमें AI से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे समझने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि नई तकनीकें नई चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लाती हैं। अंतर केवल इतना है साथियों कि जो लोग समय के साथ सीखते रहे हैं वही हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं।

साथियों, युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और सुनहरा दौर होती है। इस उम्र में सपने बड़े होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी भरपूर होता है। यही जोश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन जब यही जोश विवेक और धैर्य से दूर हो जाता है, तब कई बार छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। साथियों, आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ युवा सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए खतरनाक स्टंट करते हैं, तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं या बिना सोचे समझे किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ क्षणों का रोमांच कई बार पूरे जीवन का दर्द बन जाता है। साथियों, जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जोश हमें आगे बढ़ाता है, जबकि होश हमें सही रास्ता दिखाता है।

साथियों, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने उत्साह को संयम और अनुशासन के साथ जोड़ा है, वही लोग समाज और देश के लिए प्रेरणा बने हैं। आज की युवा पीढ़ी के सामने कई अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर का दबाव, सोशल मीडिया की तुलना और जल्द से जल्द कामयाबी की चाह, इन सब के बीच कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। साथियों, जब भी कभी गुस्सा आए, कोई बड़ा फैसला लेना हो या किसी की बात बुरी लगे, तब एक बार रुककर ज़रूर सोचिए। अक्सर कुछ मिनटों की शांति हमें ऐसी गलतियों से बचा लेती है जिनका पछतावा कई सालों तक रहता है। याद रखिए साथियों, असली बहादुरी जोखिम उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। अपनी एनर्जी को पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण जैसे पॉजिटिव कामों में लगाइए, जिससे आपका ये जोश देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सके। आइए साथियों, हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने उत्साह को कभी भी लापरवाही में नहीं बदलने देंगे। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, क्योंकि जोश और होश का संतुलन ही एक सफल, जिम्मेदार और आदर्श नागरिक की पहचान है।

0: साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक होगा तब हम मुस्कुराएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं वही जीवन को सही मायनों में जीते हैं। कहा भी जाता है साथियों कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि विज्ञान भी इसे सही मानता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे कई हार्मोन्स निकलते हैं जो तनाव कम करते हैं, मन को शांत रखते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, करियर की दौड़, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हम मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या परेशान रहने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? साथियों, बिल्कुल नहीं। उल्टा हम मानसिक और शारीरिक रूप से और कमज़ोर हो जाते हैं। युवाओं के लिए तो मुस्कान और भी ज़रूरी है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। अगर युवा सकारात्मक सोच रखेंगे और मुस्कुराते हुए चुनौतियों का सामना करेंगे तो वे हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। साथियों, मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम दुखों से हार नहीं मानेंगे। मुस्कान हमारी हिम्मत का प्रतीक है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी की सफलता देखकर हम दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि उसने उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष किया है। इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा लीजिए और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। हंसी रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। एक मुस्कुराहट अनजान लोगों को अपना बना सकती है, नाराज लोगों का गुस्सा कम कर सकती है और उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है। इसलिए जब भी मौका मिले दिल खोलकर हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए और खुशियां बांटिए। हाँ, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम हर समय केवल मजाक ही करते रहें। जीवन में गंभीरता भी ज़रूरी है। सही समय पर हंसना और सही समय पर जिम्मेदार बनना, यही जीवन का संतुलन है। अंत में साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिंदगी हर दिन नई परीक्षा लेती है, लेकिन मुस्कान हर मुश्किल को आसान बना देती है। चेहरे की मुस्कान मत खोइए, क्योंकि यही आपकी सबसे सुंदर पहचान है।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

आशा करती हूँ साथियों आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ। तब तक अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की

0: बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अंतराल के बाद आपका स्वागत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के गाए गुरु फिल्म के गीत से। शब्दकार गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान।

अगला गीत लंदन ड्रीम्स फिल्म से है, विशाल ददलानी और रूप कुमार राठौड़ ने इस गीत को गाया है, प्रसून जोशी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

नादानिया फिल्म का गीत तुषार जोशी, मधुवंती बागची और सचिन जिगर ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत क्षत्रिय फिल्म से लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: बोल सहेली बोल, तू भेद जिया के खोल। घट पे परदेसी आया, गोरी ने घूंघट सरकाया। पनघट पे परदेसी आया, गोरी ने

क्षत्रिय फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें टेलीग्राम जैसे मंचों के माध्यम से फिल्मों का अवैध प्रसार भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के तुलसी शोध संस्थान द्वारा तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कल अलंकरण समारोह में पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार लेखक और राष्ट्र चिंतक राम बहादुर राय को प्रदान किया जाएगा। और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी,
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
1: क्या बोलेगा?
2: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
2: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं
2: जी।
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
2: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
2: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
2: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
2: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
2: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
2: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।

0: रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
1: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
1: जी महाराज।
3: महाराज
2: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
3: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
2: दीवान साहब।
3: महाराज,
2: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
3: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
2: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
3: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
0: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए। आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
4: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
5: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
4: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल

0: नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
1: आज खेल में बड़ा मजा,
2: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
3: हाँ, गोल हो गया किसी का,
0: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
4: ए, इधर क्या देख रहे हो?
5: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
6: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
2: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
7: चलो चलो चलो,
5: अरे भाई निकलो। लेकिन
6: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
8: बाबा
9: तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
5: ठीक है,
9: कोशिश करते
5: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
5: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
9: जी बाबा।
5: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
9: तो क्या इनाम देते हो?
5: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है, राज दरबार सजाया गया।
10: पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला हो।
11: तुम्हें क्या लगता है
10: महाराज? आ रहा
11: है। अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
5: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
10: सही बात है।
5: उसका संकल्प दृढ़ है, वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
10: बिल्कुल सही कहा,
5: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
10: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
0: देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
7: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
2: महाराज की
12: जय हो,
2: महाराज की
12: जय हो,
2: महाराज की
12: जय हो,
2: महाराज की
12: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम

0: मित्र की सहायता।
1: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
2: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

colocar a jata.

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा, अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आ

0: सुनो भाइयों सुनो।
1: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
1: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
2: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
1: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई, चलो चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
1: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए।

0: चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साजन का घर फिल्म के गीत से। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर की शब्द रचना और संगीतकार नदीम श्रवण।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए क्रिएचर 3D फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीतकार और संगीतकार टोनी कक्कड़।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। भूल भुलैया 2 फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम के आखिर में घर घर की कहानी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है मोहम्मद अजीज और अनुपमा देशपांडे ने। हिंदी वर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति, उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक

0: सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। 10 बजे आप सुनेंगे नाटक एक शक झूठ हजार। इस नाटक के लेखक हैं राजकुमार जायसवाल, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। राग रजनी कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिए डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन। राग है दरबारी कान्हड़ा। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे अश्विनी भिड़े के गाए कुछ भजन। 9:30 पर प्रसारित करेंगे नाटक कैंसर। लेखक हैं योगेश त्रिपाठी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी प्रसारित करेंगे 10 बजे और 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनवाएंगे कामिनी काय कांतारे धारावाहिक की 22वीं कड़ी। जबलपुर

भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें हम सुनवाएंगे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान केवी के नवी बाग भोपाल के विशेषज्ञों से हुई बातचीत की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग होगा महेश सोनी का। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजमी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो गई। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया,
1: ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पहले दिन की औपचारिक बैठक के बाद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां उनका पारंपरिक उराव जनजातीय नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने जनजातीय कला और पारंपरिक विरासत से जुड़े प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया, जिसमें मणिपुर की मैतई समुदाय के प्राचीन समय मापन यंत्र त्यानियशांग को भी देखा। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने केरल के पारंपरिक अनुष्ठानिक दीप अल विलक्कू का दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कथक नृत्य, पारंपरिक सामुदायिक नृत्य और भारत की विविध पारंपरिक एवं जनजातीय वेशभूषा पर आधारित फैशन शो का आनंद लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।

0: केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में कहा कि उन्होंने फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें टेलीग्राम जैसे मंचों के माध्यम से फिल्मों का अनाधिकृत प्रसार भी शामिल है। लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सिनेमा अधिनियम 1952 में सिनेमा अधिनियम 2023 के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जा सकें। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बोली लगाने की प्रक्रिया 5 सितंबर तक चलेगी। लोग ई उपहार पोर्टल पर जाकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि सामाजिक कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जनभागीदारी के साथ चलाने की घोषणा की है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली, तिरंगा एंथम और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले जन विश्वास अभियान 2026 की भी जानकारी दी। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उपार्जन प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग उत्पादक किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी है। इसके तहत किसान को आधार, मोबाइल नंबर, रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। उल्लेखनीय कि खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। किसानों के हित में उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झाबुआ में जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को नशा मुक्ति अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अवैध मादक पदार्थों और शराब के विरुद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय पहुंचकर किताब से कल तक अभियान के तहत विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने का प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। उन्हें नवाचार, तकनीक और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्कूल का निरीक्षण कर वहाँ जुटाई गई शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी की कृषि उपज मंडी में आज किसानों के लिए बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नई खेती पद्धतियों, उन्नत फसल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल शामिल हुए।
2: भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। सरकार किसानों के साथ है। कोदो कुटकी भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है। हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल, क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है।
0: प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटे में 4.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 8.10 मिलीमीटर वर्षा राणापुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज

मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह, विधायकगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी एवं स्वर्गीय श्री मिश्र के परिजन भी उपस्थित थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एक निर्भीक राजनेता के साथ उत्कृष्ट साहित्यकार, लेखक और राष्ट्रभक्त भी थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। जबलपुर निगम आयुक्त ने विभागीय समीक्षा बैठक में नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में आगामी त्योहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परेड का आयोजन किया। शिवपुरी में बाल अकादमी शाखा द्वारा कल राजमाता सिंधिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग वार्ड में स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सीहोर जिले की भेरूदा तहसील स्थित उपजेल में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। गुना कलेक्टर ने आज जिला जेल का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई शुरुआत। सरकार ने मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की 20 अगस्त तक बढ़ाई। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल पे उपस्थित सभी भैयाहरन को हमारी भौजी बिन्नाहरन को आरती की राम राम। और भैयाहरो देखो आज तो मन बहुत ही हुलास में हुई है। काहे से देखो सावन को महीना है और जो बरखा है बाकी झिरिया सू लगी भई है ना। तो बरखा की बात कहें तो कभों तो देखो रिमझिम होने लगत है और कभों झमाझम बरस के नाचन लागत है। तो जब बखत तो देखो खूब ही ठंडक हो गई है और जो इतेक दिना से गर्मी हो रही थी उमस हो रही थी वासे भी अपन औरन को राहत मिली है। तो भैया रे सावन महीना की बात ही अलग है। जिते नज़र डारो उते हरियाली ही हरियाली ऐसो जान परत है मानो धरती माता ने हरी चुनरिया ओढ़ ली हुई है ना। और चारों ओर जब रंग बिरंगे जौन फूल है जैसे मोगरा गुलाब गुड़हैल कनेर चंपा मधुमालती ऐसी खिली हैं ऐसो लगत है कि प्रकृति अपनी खुशी इन फूलन के माध्यम से हम औरन तक पहुँचा रही है। तो भैया हरो सावन को महीना और झूला कजरी की बात ना करें का ऐसो हो सकत। अब देखो का है कि हमारी भौजी बिन्ना हरे दोपहरिया में काम निपटा के हरी हरी चुरियाँ पहन के और हरी धोती पहन के जब झूला पे बैठते हैं पींगे बड़ा होते हैं तो वो माहौल को और अच्छो बना देते हैं खुशनुमा बन जाते हैं है ना। और जब हमारी भौजी बिन्ना हरे कजरी मल्हार गाते हैं तो उनके गाने सुन के मोर पपीहा दादुर कैसे पीछे बे पीछे रह जाए। बेबी संगे नाच गा के उनको साथ देते हैं और वातावरण को और अच्छो और मधुर बना देते हैं। तो भैया हरो जब महीना भक्ति और त्यौहार को भी मानो जाते हमारी भौजी बिन्ना हरन की बात करें तो देखो सोमवार जो है वे भोले बाबा के मंदिर में जाके जल ढारते हैं खूब पूजा पाठ करते हैं बेलपत्र चढ़ाते और सबकी खुशियन की कामना करते हैं भोले बाबा से। और हमारे भैया हरे जौन कांवर चढ़ावे जाते हैं गंगा जी जो भोले नाथ के मंदिर में चढ़ाते हैं तो बेबी देखो बड़ी दूर से चल के पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जो है गंगा जल है वो शिव मंदिर में जाके चढ़ाते तो उनकी भक्ति को देखो एक अपनो ही अद्भुत निरालो अंदाज है। और त्यौहार की बात करें तो सबसे आखिर में आते भैया देखो भाई बहन के प्यार को त्यौहार रक्षाबंधन। और जा रक्षाबंधन को त्यौहार को तो हमारी बहनें साल भर से इंतजार कर रहते हैं है ना। और खुशी खुशी जब त्यौहार को मनाते हैं तो फिर भैया अपने किसान भैया रे बे पीछे कैसे रह जाएं उनके लाने भी जो महीना बड़ो ही खुशी को होते काहे से सावन की झिरिया लग जाते तो भैया जब पानी जब धरती में समाते पहुँचाते तो देखो अच्छी फसल की आस में हमारे भैया हरन के चेहरा खुशी से खिल उठते और वे फसल बोवे की तैयारी में जुट जाते। तो देखो भैया हरो का है कि बारिश की रिमझिम की खुशी में तो हम आपको आज के कार्यक्रम में हम का लेकर आए हैं तो जो बता वो ही भूल जा रहे। तो चलो हम आपको बता देते कि आज हम अपने किसान भैया हरों से आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी दुआ है। काहे से देखो भैया हर मंगलवार हम आपको आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मौसम की जानकारी दवाओ तते और कृषि सामयिक सलाह भी दवाओ तते लेकिन अब ये हर बुधवार को भैया आप और सुन सकते हो। और संगे संगे देखो अपन और चर्चा कर है आयुष्मान भारत योजना और जल स्रोतों को प्रदूषित होवे से कैसे बचाए। संगे संगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर भी हम अपने भैयारन को जानकारी दवा है। और मनोरंजन वो हम कैसे भूल सकते हैं तो भैया कछु साउन गीत कजरी मल्हार वो भी हम आपके लाने लेके आए हैं जी को हम बीच बीच में आपको सुनवाएं आपको मनोरंजन करवाएं। भैया रे देखो हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है तभी तो जब से पानी बरसन लगो है सभी के चेहरा पे एक खुशी अलग दिखाई दे रही है। और जो पानी हम लोगों के लाने कितने अनमोल है जी तो देखो हम सभी जानते हैं। अब भैया रो देखो हम और एक का कर रहे हैं कि इन जल स्रोतन को जो है जहाँ से हमें पानी मिला थे कुआं तालाब नदी इनको अपने हाथन से गंदो कर रहे हैं। अब आप सोचते हो कि काय हम अपने हाथन से काय गंदो कर रहे हैं तो भैया देखा आपको बता दें कि खेतन में रासायनिक पानी से जो जल के स्रोत है बेगंदे हो रहे हैं कारखानों से निकलने वाले जो जहरीला कचरा है प्रदूषित पानी है या घर में उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की पन्नियाँ इन सभी से भैया जो देखो हमारे जो जल के स्रोत है वे प्रदूषित हो रहे काहे कि भैया देखो इन सबको हम नदी तालाब में जौन बहा रहे जौन फेंक रहे है ना। अब नदियन के घाट पे हमारे कपड़ा धो रहे अपने ढोर बछेरू को नहा रहे साबुन को गंदो पानी सीधे तालाब में जा रहा हो तो भैया जिस सभी से तो अपना जो साफ मीठो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है।
और आपको पता है कि जो गंदो पानी अगर जी को हम उपयोग कर रहे थे तो भैया जैसे कितने एक तरह की संक्रामक बीमारी जैसे हैजा, टाइफाइड है ना, पीलिया जैसी बीमारी फैलाते और फिर जी से अपने को कितनों नुकसान होता है जे तो देखो हम सभी जानते हैं कि भाई शरीर को कष्ट तो होता ही है, संगे संगे जो रुपया पैसा है वो भी अस्पताल में लग जाते, दवाई में लग जाते। तो भैया हरो हमें सजग बनने हैं, पानी के जो स्रोत हैं उन्हें प्रदूषित नहीं करने हैं और संगे संगे भैया देखो हम जो सब प्रयास जब करें मिलके कर सकते हैं, कोशिश करें कि हमारे नदी तालाब में कचरा नहीं फैला है, पन्नी नहीं डाल है, पूजा को बेकार को जो सामान है वो नहीं डालें, किनारन पे कपड़ा ना धोइए, अपने ढोर बछेरू को उतना डुबाएँ। भैया कोशिश करें कि जौन सामान हमारे फेंक रहे तो हम काबा को दोबारा उपयोग कर सकते। अब जैसे पूजा पाठ की अपन और बात करें कि जैसे फूल माला है भैया, कई भैया हरे हैं अपने नदियन में बहा देते हैं ना फूल माला या पूजा को सामान है, तो भैया जैसे फूल माला के फूल है तो अपन उसे अच्छी खाद बना सकते हैं। भगवान जी के जो कपड़ा बच गए

गए हैं उसे अपन देखो उनकी रजाई गद्दा तकिया बना सकते हैं, उनके बैठवे को आसन बना सकते हैं, चुनरी जो माता की चुनरी होते उसे अपन पर्दा बना सकते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का अपन दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही भैया देखो नदी में साबुन को पानी फैक्ट्री में जो को जो पानी होते हैं उनको अपन कोशिश करें कि नदी में ना जान दें, उसे पानी प्रदूषित हो जाते हैं ना। तो भैया हरो हमारे खेतन में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद को उपयोग करें। इसे का हुई है कि जब बरसात को जो जब पानी बरसाते हैं तो जो गंदो रसायन है वो बह के सीधे जल स्रोतों में नहीं मिल पाए। तो भैया रो टेम टेम पे संगे संगे अपने कुआं तालाब बावड़ी की भी साफ़ सफाई करते रहे। कैसे भैया रो देखो जो पानी धरोहर है, अमानत है, जिखो हमें आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन तक सकुशल पहुँचाने हैं। और भैया हम सभी को मिलके जल स्रोतों को प्रदूषित होवे से बचाने हैं, जल स्रोतों को साफ सुथरों रखने हैं। तो भैया रे अब आप सोच रहे हुई हो कि जी जी चर्चा तो करके रह गई, हमारे मनोरंजन को ख्याल नहीं है। तो भैया ऐसा हो सकता है कि हमें आपके मनोरंजन को ख्याल ना हुई है। भैया रो सावन को महीना है तो हमने सोची कि काहे ना आप और उनको सावन गीत सुनवा दो जाए। तो चलो भैया हम और आप मिल के सुनाते भंवर सिंह अहिरवार के स्वर में ये सावन गीत।

0: तो देखो, अब है हम और सुन रहे हते भंवर सिंह अहिरवार के स्वर में ये साउंड गीत। और भैया हरों, उम्मीद है कि जो गीत आपको पसंद भी आओ हुई है। और देखो, जैसे हमने आपको बताई जाती कि हर मंगलवार हम आपको आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से जानकारी दुबाओ तते, लेकिन अब मंगलवार की जगह भैया आप और अनकिलाने हम लेकर आए हैं प्रति बुधवार, हर बुधवार को। तो भैया देखो, आज आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी और कृषि सामायिक सलाह हम आपके लाने लाए हैं। और जामे अपन खां जानकारी दे रहे हैं अपने कृषि वैज्ञानिक भैया डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। तो भैया रे चलते हैं उनके पास और लेते हैं जानकारी।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरवेंद्र सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम प्रयोगशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः छुटपुट से मध्यम बादल रहे तथा हवा लगभग 4.5 से 5.1 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम एवं आकर्षण 71 से 72 और शाम को 51 से 55% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यम कालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा हल्की से लेकर भारी वर्षा होने तक का अनुमान है। हवा लगभग 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 30.4 से 30.9 और न्यूनतम तापमान 24.9 से 25.6 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 93 से 97 और शाम को 79 से 84% के बीच रहने वाली है। तो किसानों की संभावित मौसम में हल्की से लेकर भारी, यानी आगामी 5 दिनों में 1-2 दिन भारी वर्षा और बाकी 1-2 दिन हल्की वर्षा होने की संभावना, यानी 5 दिन वर्षा की संभावना जो दिखाई गई है, उसके हिसाब से आपको जो कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार की है। किसान भाई, संभावित मौसम को देखते हुए आगामी 5 दिनों में वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में खरपतवार नाशी जो आप छिड़काव कर रहे थे या नियंत्रित मात्रा देना था, अभी उसको स्थगित करें, अभी रोक लें जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक। साथ ही किसान, संभावित मौसम में आगामी 5 दिनों में भारी वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में अतिरिक्त वर्षा जल निकास की व्यवस्था करें तथा जल निकास वर्षा होने के 2 घंटे बाद करें जब पानी का निचालन हो जाए। साथ ही किसान भाइयों, वर्षा के बाद जब मौसम साफ हो तो फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो किसान भाई, अरहर की बात करें तो इस समय अरहर की फसल खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी की छिड़काव की जरूरत है, जिसमें एवेजा थाइपर प्लस एवेजा मार्क 70 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 20-25 दिन की अवस्था पर जब मौसम साफ हो जाए उसके बाद इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, तिल की बात करें तो तिल की फसल में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और इस समय भारी वर्षा के अनुमान को देखते हुए तिल की फसल का विशेष रूप से ध्यान रखें और जितना अतिरिक्त वर्षा जल निकालने हेतु जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही बाजरा की बात करें तो किसान भाई, बाजरा भी आपका वृद्धि अवस्था में है और उसमें भी पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें भी ज्यादा पानी पड़ने पर उसके जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही किसान भाई, सोयाबीन और तो मूंग की बात करें तो इसमें पीला मोजर रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़ कर जमीन में लगाकर नष्ट करें तथा सफेद मक्की कीट की रोकथाम हेतु थायोमेटाजम 25 WG/100 ग्राम दबा प्रति लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मौसम साफ हो रहा है, यानी आगामी 5 दिन के बाद जब मौसम साफ हो तब इसका छिड़काव करें। साथ ही साथ सब्जियों की बात करें तो इस समय संभावित मौसम में लगातार 5 दिन तक वर्षा होने की संभावना को देखते हुए जो आप इस समय तैयार सब्जियां मिर्च है या तोरी जो भी है तो उनकी समय समय पर तैयारी करते हैं, अन्यथा उनकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही किसान भाइयों, भिंडी की बात करें तो भिंडी की फसल भी इस समय फलन अवस्था में है तो इसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें आवश्यकता अनुसार, लेकिन छिड़काव अगले 5 दिन बाद जब मौसम साफ हो तभी करें। साथी किसान भाइयों, इस समय जो आपने नवरों पे बहुत प्रॉब्लम लगाई है, जैसे बैंगन टमाटर खरीद प्याज या आने की फूलगोभी की उत्पत्ति जो रोपाई हो चुकी है उसमें अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की जल निकास की उचित व्यवस्था करें, तथा जब फसल आ जाए मौसम साफ हो जाए तब उसके खरपतवार नियंत्रण करें। साथी किसान भाई, मिर्च की बात करें तो मिर्च में तुलना रोग की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें तथा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 25 WG/100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथी किसान भाइयों, बैंगन और टमाटर की बात करें जिसमें तना छेदक या प्रतिरोधक कीट की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथी किसान भाइयों, पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए पशुओं की नाद व पशुशाला की नियमित सफाई करें व प्रतिदिन पशुशाला की सफाई 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर जब आपके पशुशाला की सफाई हुआ उसके बाद उसका छिड़काव कर दें। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में संक्रामक रोग होने की पशुओं में संभावना बनी रहती है तो अगर संक्रामक रोगों से बचाव हुए दूषित चारा दाना न दें और साथ में तारावाद का पानी न पिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर सरवीन सिंह।
0: तो भैया देखो, अभी हमने आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी रही और कृषि सामयिक सलाह भी अपन खां दई कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरविंद्र सिंह ने, और भैया हरों की आप सभी ने जो हमारे किसान भैया हरे हैं उनने जो जानकारी को सुन के जैसे डॉक्टर हरविंद्र सिंह भैया ने बताई ऊ के हिसाब से भी अपने काम करें तो उन्हें खेती में अच्छो लाभ भी मिले। और भैया अब देखो, अब अपन लेते तनक विराम, बस के बाद फिर अपन चर्चा करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया देखो, एक पुरानी कहनात है ना कि उत्तम सुख निरोगी काया, मतलब यही है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख भैया शरीर को नीको रहबो है। पर बीमारी तो देखो कभी पूछ के नहीं आती। जब कभी घर में कोनो बीमार पड़ जाते तो भैया सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब और मजूरी करवे वाले अपने भैया हरन को होते। इलाज में इतना पैसा खर्च हो जात कि कभी कभी तो देखो जमीन जग्गा जेवर तक सब कछु गिरवी रखवे की नौबत आ जाते। तो ऐसी परेशानी और चिंता को भल जो है हल निकालो है अपनी सरकार ने। सो उनने बहुत ही बली और अच्छी योजना चलाई है जिको नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो भैया हरो, जय योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भैया देखो, सबसे पहले बताएं आपको कि जाके फ़ायदा काका है। भैया हरो देखो, जहाँ 5 लाख रुपये तक को इलाज फ्री में होता है, और सबसे नीकी बात तो जो है कि अस्पताल में भर्ती होबे पर मरीज खां अपनी जेब से एक पैसा नहीं देन पड़त। दवाई को, ऑपरेशन को खर्चा और जहाँ डॉक्टर की फीस सभी कछु शामिल होते। तो भैया यदि आप जीखो लाभ उठावो चाहो तो सबसे पहले जो आपको पतो पारने हैं कि तुम्हारा नाम ई योजना में है कि नहीं है। आप और ई के लाने का करो कि अपने पास के जनसेवा केंद्र या ग्राम पंचायत या सरकारी अस्पताल में जाके उतने पतो लगा सकत हो। और भैया देखो, संगे हम तो आप यही कहें कि जब आप जाओ तो अपनो आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूर ही ले जाओ। अगर आपको नाम बामे नहीं आ तो भैया तुरंत ही अपनो जो नाम अपनो उतने लिखवा के और अपनो आयुष्मान कार्ड बनवा सकत हो। और आपको बता दें कि जो कार्ड बनवावे के लाने कोनो पैसा अतिरिक्त पैसा नहीं लगत, कोनो फीस नहीं लगत। तो भैया हरो, जो गरीबी योजना के नीचे गुजर बसर करवे वाले अपने जोन भैया हरन हैं उनके लाने तो जो बड़ो ही फायदे की योजना है। अगर आपको कार्ड नहीं बनवाए भैया तो आप नो कार्ड बनवाओ और अपने घर परिवार के जो लोग हैं वे सब स्वस्थ रहें। तो भाई भैया देखो, अपनो गांव देश भी आगे बढ़े। तो भैया जई है जे आयुष्मान योजना को लाभ है ना, तो हम तो यही कहें कि कार्ड बनवा के जय योजना को भैया लाभ उठाओ। और अब एक गीत और हो जाए तो चलिए, हरनाम सिंह कुशवा के स्वर में अपन जो गीत सुनते हैं, साउंड गीत।

तो देखो, अबे हम और अन्य हरनाम सिंह, कुशवा और साथियों के सर में जे झूला गीत सुनो और अब कछु चर्चा हो जाए। भैया रे देखो, हमारे जोन भैया हरे हैं, हम जाना था कि उनमें हुनर की कोनू कमी नहीं है, है ना। हमारे कई भैया रे देखो, कितने अच्छे अच्छे खिलौना बना ले, तो कितने अच्छे अच्छे माटी के बर्तन बना ले। तो कई भैया हरे जो है वे देखो, हाथ के काम में इतने कुशल होते कि का कहे, है ना। अब का होते भैया, कहते ना कि समय के साथ चीजन में बदलाव जरूरी है ना। अगर हमारे एक तरीका से काम करते रहे, बामे कछु नवपन ना हुई है, तो भैया लोगन को पसंद नहीं आए। काहे से आजकल तो देखो, सभी की डिमांड होते है कि कछु ने नव जाने हैं। तो हाथ के काम के संगे संगे कछु नए नए तरीका के औजार अगर मिल जाएं, है ना, तो उसे का होता है कि अपने काम में और कुशलता और निखार आ जाते हैं, है ना। तो भैया रो चिंता नहीं करने है, शासन ने तुम जैसे हुनरमंद भैया हरन के लाने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है। जी मैं, हमारे ऐसे भैया हरे जो माटी को काम अच्छो कर ले, तो कोनो लकड़ी बनावे को काम में बड़े कुशल हैं, या सुनारी को काम अच्छो कर लेते, या फिर कपड़ा अच्छे से लेत, है ना, या फिर जोन बाल काटवे को काम है, या राजमिस्त्री है, या चमड़ा के बड़े अच्छे अच्छे जूता चप्पल घड़ लेते। तो ऐसे पारंपरिक कारीगरन को सीधो लाभ जाए योजना के अंतर्गत मिलते। और जामे भैया देखो, का मिलते कि देखो, आप और उनको जोन औजार चाहने हैं, ऊखे लाने 15,000 रुपया की मदद मिलते, और जीखों आप और उनको वापिस भी नहीं करने पड़त। साथ संगे संगे शासन काम की नई तकनीक सिखावे के लाने आप और उनको 5 से 7 दिना की फ्री ट्रेनिंग देते। और ट्रेनिंग के दौरान भैया हर दिना 500 रुपया की जो हिसाब से जो भत्ता है वो भी मिलते। उसे कहा कि भैया तुम्हारा की रोजी रोटी को नुकसान नहीं हो। तो भैया जी खिलाने अब लाभ उठावे की बात चली, तो कैसे लाभ उठाएं? तो भैया जनसेवा केंद्र में जाके अपनो नाम लिखाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें, और भैया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को आप लाभ उठा सकते हो। और अब चलते चलते एक लोकगीत और हो जाए, तो चलो हम और आप मिलके सुनाते रेखा शर्मा और साथी के स्वर में ये हिंडोला गीत।

तो रेखा शर्मा के गाए जा लोकगीत के साथ भैया अब देखो जावे की बेरा भी हो रही है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। सबई भैया हरन को आरती की, राम राम, जय जवान जय किसान।

आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।
विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरीदेव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी

पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू

इस सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंक कार्य बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार्य बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर, और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर और साथ ही जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को लेकर जो पुरानी स्थिति थी और अब इस विधेयक के बाद जब ये अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक और इसमें प्रशासनिक जो जटिलताएं थी उनको दूर करने में इससे मदद मिलेगी। हम इस विषय पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सुविमल जी। अगर हम भारत में नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे सामने 1969 का एक मूल कानून है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है, लेकिन जब ये विधेयक अब संसद में पारित हो चुका है और अधिनियम के तौर पर ये विधेयक हमारे सामने आएगा तो क्या कुछ इसमें हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी?
3: देखिए, ये बहुत जरूरत था इस संशोधन को लाने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आपकी जो जन्म और मृत्यु समय पर रजिस्टर नहीं करते हैं और जो एक प्रशासनिक रूप से भी तकलीफ होते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट गतिविधि भी चलते थे इस डेथ रिपोर्ट में। और जब हमारे आगे की जो वेरिफिकेशन पर्पसेस या बहुत सारे बेनिफिशियरी पर्पसेस के लिए जब करेक्ट रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड रखना जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको शुरू से लाभ के इसमें सारे जो बदलाव लाना था इसलिए इसको लाया गया। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो ये जन्म की पंजीकरण ये 86.6/2014 में जो था उससे 99.1 तक पहुंच गया 2024 में, और मृत्यु का पंजीकरण 72.99 तक आ गया। तो ये जो एक बदलाव आया था, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सही और वेरीफाइड तरीका से ये पंजीकरण होना चाहिए, तभी आगे एक करेक्ट और रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। और ये काफी दिन हमारा इसमें बहुत उसमें देखा जाता था कि एज बेनिफिट के लिए बहुत लोग अपने जन्म की तारीख गलत या कम करके डालते हैं। आप बहुत सारे मैंने सरकारी संस्थान में भी देखा है कि बंदा देखने में लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन उम्र में वो 50 भी नहीं।
2: बिल्कुल,
3: इसलिए इस तरीका के जो फ्रॉडुलेंट गतिविधि होते थे इनको भी रोकना जरूरत था, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था।
2: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुविमल जी बताई कि जो सत्यापन या वेरिफिकेशन है उस पर महत्वपूर्ण फोकस है इस विधेयक में, और जो जन्म और मृत्यु है वो नागरिकों की एक बहुत एक ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे में ये भी है कि जो पहले हम देखते थे कि जैसा आपने भी बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के जो आंकड़े थे उनमें बहुत बिखराव था, अब ये प्रावधान है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा नागरिकों का। तो ऐसे में जो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे सामने नागरिकों का जन्म और मृत्यु को लेकर सामने आएगा, उससे कैसे आंकड़ों के इस बिखराव को समेटने में मदद मिलेगी और कैसे हमारे सामने पुख्ता और सही आंकड़े जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के सामने आ सकेंगे?
3: देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स रहने का पहले से करना चाहिए था। हमारा यहाँ ये गतिविधि राज्यों का बीच में राज्य अपना तरीका से इसको रिकॉर्ड के रखते थे और बहुत समय ये एक कोऑर्डिनेशन का भी इश्यूज होते थे। जब 2023 में ये कानून का ओवरहॉल हुआ था तब बार्ड सर्टिफिकेट को एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ की उसको ठीक किया गया था, और जगह और डेट ये दोनों सब की पब्लिक सर्विसेज जो दिया जाता है जैसे स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए भी इसको आधार बनाया गया था कि एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ होना चाहिए, तो ये सिंगल मैंडेटरी प्रूफ को आप लागू करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की काम देश में हुए हैं, लेकिन ये देखा जाता था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग डेटा फेंकते हैं, तो इसको एक कॉमन डेटाबेस में जब लाते हैं तो ये वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए जरूर सही होते हैं, लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन के अलावा भी जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में सुविधा के लिए उसमें भी बहुत मदद होते हैं।
2: बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला है तो अब हमारी जो मांग है वो दूसरी तरह की है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारे जो कानून और अधिनियम है वो भी, उनका ढांचा भी डिजिटल होना, उसका स्वरूप भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब ये संशोधन संसद में पारित हुआ है तो उसका जो एक डिजिटल स्वरूप अब हमारे सामने आएगा, उससे जो आम नागरिक है उन्हें कैसे अपने स्तर पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है, खासतौर पर अगर जन्म के ही हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है वो हमें कई अवसरों पर पड़ती है, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाएगा कि एक डिजिटल रूप से हमारे सामने कॉमन डेटाबेस से एक आम नागरिक को जटिलताओं से दूर होने में उसे मदद मिलेगी।
3: देखिए, नागरिक के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए क्योंकि हर जगह में इनको बार बार वेरिफिकेशन करना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉमन डेटाबेस जहाँ एक स्थित डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसी के साथ हर संस्था जो इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए, वही पे उस रिपोजिटरी से इसको टैली करेंगे, तो इनको बार बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना या दिखाना वो काम से ये जो एक टेडियस एक जॉब होते है कि इनको हर जगह में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाना पड़े, वो मेरे ख्याल से एक नागरिक का रूप में उनके लिए एक सुविधा होता है। दूसरी बात होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी, जिस तरीका से लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी देखे गए है कि वो कहीं एक ही आदमी कभी इस डिस्ट्रिक्ट में दाखला किया ही किया हुआ है, तो ये जो डुप्लीकेट की जो बात आती थी वो भी दूर हो जाते, तो एक साफ सुथरा डिजिटली रिकॉर्डेड डेटाबेस में जब नागरिकों की रिकॉर्ड्स रहते हैं तो आगे इनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है कि क्या किस तरीका से वो नागरिक प्रमाण करे। थोड़े बहुत आउट चेंजेस लाए गए कल जैसे राज्यसभा ने पारित किया है, मुझे लगता है ये जो एक एनोमली था पब्लिक पोजिशन में वो साफ हो जाएगा।
2: मृत्यु की जो रिकॉर्ड की अस्पष्टता जो थी उसमें कई बार ऐसी अड़चनें हमें व्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती थी, चाहे वो एक अगर उदाहरण लें संपत्ति का हस्तांतरण हो, पेंशन, बीमा क्लेम, इस तरह से जो कई कागजी अड़चनें थी वो भी क्या आने वाले विधेयक से आम परिवारों को राहत देंगी कि अब मृत्यु के रिकॉर्ड में स्पष्टता रहेगी?
3: जरूर, अगर आप देखें तो जब आधार लागू किया गया था तब देखा गया था कि बहुत सारे जगह में लोग गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जा रही है, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जो बेनिफिट जाते थे वो भी जा रहे हैं, तो ये जो मैंडेटरी रूप से ये डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, और जिस तरीका से आपकी डेथ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में, इससे ये सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होते थे या बहुत सारे केसेस में फ्रॉडुलेंट के अलावा भी बहुत लोग नहीं जानते कि कहां से डेथ सर्टिफिकेट में या डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी जो तकलीफें होते थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से ये सारे दूर हो जाएंगे, तो इससे आपका लोगों का जो जेन्युइन स्थिति है, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा डेथ के बाद, या जो पेरेंटल ट्रांसफर्स होते हैं या बहुत सारे जगह में आपकी एक डेथ के साथ जब बंद होते हैं खाता, तो इसी में बहुत मदद होगा।
2: जी, आपने अभी SIR का जिक्र किया तो मैं मतदाता सूची पर ही आना चाहूंगा। जब हमारे पास एक स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे जन्म और मृत्यु को लेकर, तो एक ऑटोमेटेड हमारे पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने की सुविधा क्या हो पाएगी? अगर हमारे पास स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे तो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास 18 वर्ष पूरी कर चुके जो युवा मतदाता है उनकी स्वतः सूची को अपडेट करने में इससे कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं और करेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई, जिस तरीका से आपकी टाइमिंग दिया गया कि 30 दिन की डिले के पहले क्या हो सकता है, 30 दिन डिले के बाद क्या हो सकता है, एक साल या दो साल, इसमें जिस तरीका से माइन्यूटली ये प्रोविजंस लाए गए उससे क्या होगा कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन की तौर से वो अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस हिसाब से लेंगे वो उसका भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे एकदम सही बर्थ रिकॉर्ड होगा और जो आगे इनकी जो और सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन वो कर

0: करते रहेंगे उसमें वही टेली होगा। तो इलेक्शन की कार्ड में भी जो इश्यूएंस होगा 18 साल होने पर, ये इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा और जो सही डेट ऑफ बर्थ है।
1: एक और सवाल मेरे मन में आया कि जैसे खासतौर पर चुनौतियां उन बच्चों के साथ भी होती थी जो विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे, जैसे सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके बच्चों के जन्म के डेटा को लेकर, या फिर जो गोद लिए हुए बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं है उनके जन्म के रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रावधान इस विधेयक में दर्ज हैं जो इन विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड को भी सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो और उनको किस तरह से फायदा होगा इससे?
0: जी, 2023 में जब 1969 की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट की अमेंडमेंट लाए गए थे, उसी में ये सारे केसेस को बड़े विस्तार रूप से देखा गया है और उसका लिए किस तरीके से उसको एप्लीकेशन होगा वो भी दिया गया। अब जो आया है इस कल राज्यसभा में पारित किया, इसमें विशेषकर ये जो आपकी दाखला में या एप्लीकेशन में जो डिलेज होते हैं इसको देखने के लिए, जी आप अगर ये 30 दिन तक डिले होते तो ये डायरेक्ट लोकल अथॉरिटी इसको रजिस्टर कर सकता है प्रिस्क्राइबिंग, अगर 30 दिन से एक साल है तब फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और लेट फी के साथ होगा, एक साल से दो साल होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो नए प्रोविजन आए कि एक साल और दो साल से ज्यादा एक्सीडिंग जो डिलेज आए तो उसमें, तो ये इसमें ऐसा कोई नया कुछ नहीं लाया गया जो देश में संशोधन कहते हैं। जहां तक आपने जो विशेष वर्ग के कुछ केसेस उदाहरण बताए उनके लिए ऐसा इसमें कोई कल की उसमें कुछ नहीं है।
1: एक अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने आते हैं सामने, उनकी जरूरत समय के साथ होनी कितनी जरूरी है कि उसमें परिवर्तन आए। अगर हम जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक का ही उदाहरण लें, तो जो टारगेटेड डिलीवरी है योजनाओं की, या जो कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच है, या जो सही मानक है लोगों तक पहुंचाने, उनमें सरकार को कितनी और प्रशासन को कितनी मदद मिलती है जब एक परिपक्व और संशोधित समय के साथ विधेयक हमारे सामने आता है?
0: जरूर, ये बहुत फायदा होता है इसीलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पहले से उसको उस इंटीग्रिटी से किया नहीं गया है, जैसा बहुत सारे बांग्लादेश से भी आए माइग्रेंट लोगों को भी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो हमें किसी एक समय इन चीज को साफ करना था। अब ये जो प्रयास हुए है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ में जब बर्थ्स रजिस्ट्रेशन है तो उसी में ये क्लैरिटी रहेंगे कि जो सही है वही आपकी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो साफ करने का जो काम प्रयास था ये बहुत सही समय पे हुआ है, क्योंकि इससे भी आगे आप आज हम आधार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी वो सिस्टम ऑलमोस्ट क्लीन कर चुके हैं, लेकिन आगे भी इस तरीके से और आगे इसको कैसा और सख्त किया जाए कि किसी तरीके से फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना आए सिस्टम में, इसीलिए समय समय पर संशोधन लाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल जो नेटवर्क्स होते हैं और आपकी वेरिफिकेशन की सुविधा भी बहुत बढ़ चुका है, सो मुझे लगता है ये बेसिक करेक्शन जो इस संशोधन से आएगा इससे बहुत सारे आगे फायदा होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद सुमिबल जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर आपने विभिन्न आयामों पर हमारे साथ अपना विश्लेषण रखा, बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मिस्टर आजाद फिल्म के गीत से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, गीतकार इंदीवर, और इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

लीजिए अब सुनिए डांसर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी।

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों के अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने
4: बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
5: धारा 370 और 35 ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
4: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
6: जिस ऊंचाइयों के तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
4: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
7: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
4: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है।

0: श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
1: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्विता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35 ए की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया पर बढ़ते काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बरवक्त इसलाह है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हमाहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तिजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आरई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात से वाकिफ है, जिनमें नुकसानदेह मवाद तक रसाई, साइबर तरीके से डराना धमकाना, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल लश शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत आलमी वाकयात और ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक बदलते हुए बैन अक्वामी इंजिबाती तरीक़ेकार से आगाह रहती है, जिनमें डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी इख्तियारात के तहत किए गए इकदाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ज़ाती डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कानून 2023 नाफिज किया जा चुका है, जो डिजिटल ज़ाती डेटा की खातिर एक कानूनी तरीके का कायम करता है। डीपी एक्ट बच्चों की ऑनलाइन राजदारी के तहफ्फुज़ के लिए एक कानूनी तरीक़ेकार भी फ्राहम करता है। मेटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है, के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद इस

0: سے متعلق دیگر مواد ڈیپ فیک اور پلیٹ فارم کے کام کاج میں خامیوں پر معذرت کا اظہار کیا ذرائع کے مطابق میٹا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مخصوص قسم کے مواد کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی رقم ادا کی جاتی رہی بھارت سرکار نے میٹا کو واضح کیا کہ وہ صرف سالس پلیٹ فارم کی تعریف کے تحت نہیں آتی بلکہ وہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا مواد کس تعریف کو دکھایا جائے اس پر میٹا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا آج دفعہ 370 اور 35A کو تاریخی طور پر منسوخ کیے جانے کو 7 برس مکمل ہو گئے اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2019 میں آج کے دن ہی دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی زندگیوں میں کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلیاں آئی ہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں بنیادی ڈھانچوں میں توسیع ہوئی ہے اور تعلیم حفظان صحت صنعت کاری اور کھیل کود جیسے شعبوں میں مواقع میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین اور حاشیے پر رہ رہی برادریوں اور ان افراد کو جنہیں دہائیوں سے بنیادی آئینی حقوق نہیں دیے گئے انہیں آئین کے مکمل نفاذ سے با اختیار بنایا گیا ہے انہوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کی ترقی کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کو وکست بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھنے انہیں شرمندہ تعبیر کرنے اور اس سلسلے میں تعاون کرنے کا موقع حاصل ہو دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی قدم سے جموں کشمیر میں ترقی میں تیزی آئی ہے
1: دھارا 370 اور 35 سے یہ ایک ویبھیدکاری اور انیائے پوروک ایک دھارا تھی جس کو سماپت کیا نریندر مودی جی نے اور اس کے بعد جموں کشمیر میں وکاس کی رفتار بھی تیز ہوئی وراثت اور وکاس دونوں کو بل ملا وہاں کے ناگرکوں کو روزگار ملا پہلی بار انہوں نے انفراسٹرکچر میں اتنا کام ہوتے ہوئے دیکھا تو ناگرک تو وہاں خوش ہیں
0: دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کنیکٹیویٹی حکمرانی سیاحت سرمایہ کاری اور سیکیورٹی میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے کنیکٹیویٹی عوامی خدمات اور اقتصادی ترقی کے ذریعے یکسر تبدیلی آئی ہے جس سے حکمرانی اور معیار زندگی بہتر ہوئے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں پنجاب پولیس نے طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران دلی کے جنتر منتر کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں دہشت گردی کے ایک سرحد پار گروپ کے منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے امرتسر پولیس کی جانب سے پتہ لگائے گئے آئی ایس آئی کے حامی سرحد پار دہشت گردی کے دو گروپوں نے تحقیقات کے دوران انکشاف کیا کہ وہ پیٹرول بموں کے ساتھ احتجاج کے مقام پر حملہ کرنے کے ارادے سے دلی گئے تھے امرتسر کے پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھلر نے کہا کہ حراست میں لیے گئے 9 افراد میں سے 4 کم عمر کے ہیں اور انہیں آئی ایس آئی کے آقاؤں نے تربیت دی ہے بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے آج اپنی پالیسی میٹنگ کے اختتام پر اہم پالیسی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے 5.25% برقرار رکھا ہے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ ایم پی سی نے اپنے رخ میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ موجودہ مالی برس میں ترقی کی شرح کے تخمینوں کو 6.6% سے بڑھا کر 6.7% کر دیا بندرگاہوں جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربنند سونوار نے آج مغربی ایشیا اور دیگر خطوں میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان بھارتی ملاحوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سونوار نے کہا کہ مرکز نے مسلسل ملاح پہلے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس کے سبب دنیا بھر میں ملاحوں کی خدمات فراہم کرنے والا بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی جی کام سینٹر مصیبت کے وقت الرٹ کی نگرانی کرنے اور بچاؤ کارروائیوں میں تال میل کی خاطر ہر وقت کام کر رہا ہے جاری بحران کے دوران پھنسے ہوئے 4,000 سے زیادہ بھارتی ملاحوں کو بحفاظت واپس لایا گیا ہے جبکہ ہنگامی صورتحال میں کارروائی کرنے والے وسیلوں نے 16,000 سے زیادہ کالز اور 40,000 ای میل کا جواب دیا ہے بھارت نے آج پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر POJK में खूनरेजी बंद करे, अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे, नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से नाम नहाद योम इस्तेहसाल से मुतालिक दिए गए बयानात पर सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम नहाद योम इस्तेहसाल मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को किए गए आईनी इकदामात भारत का अंदरूनी मामला हैं और पाकिस्तान को इन इकदामात पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुशाहदा कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल उत्तराखंड, झारखंड, मगरी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, उड़ीसा वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल अंडमान व निकोबार जजायर, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के साहिली इलाके, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश से शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों, जनूबी कर्नाटक, जैली हिमालयी इलाके, मगरी बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। जनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन के सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वैलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। हालांकि आकर्षि कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खवातीन के डबल्स के मुकाबले में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर कोरिया की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। मिक्स डबल्स में 6 दर्जे की शरूति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी, कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के साथ साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
5: जी नमस्कार
3: शरद जी, आपके साथ है, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
4: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देकर उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल जो कि फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
3: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
5: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। पुलिस साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों

0: वो सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है, तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई, उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया है 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बाकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से एक कम से कम समय में सर्कुलेट कर दें और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको उसको भी एक्टिवेट किया गया जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट क्योंकि देखिए होता क्या है जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो कहता है बैंक करेगा बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता तो ये एसओपी जो मैंने बताया इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
0: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है ढांचा है वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को एक्सपर्ट्स को रिजर्व बैंक को इन सबको जो है मिलके और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस ताकि और उसके कारण से ये निपटारा नहीं तो हम नई नई चीजें 1930 है आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है वहां ऑल इंडिया एक लाइन है लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता तो लोग एकदम से हो जाते हैं और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं बात करते हैं तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डिवेलप होना चाहिए अभी वो है लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को यूरो है पाउंड है किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिस पे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे जिनको दिक्कतें आई जो पीछे शिकार हुए हैं उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं जहां हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डी फ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है, मतलब जो फ्रॉड मान लीजिए मैं मानता हूँ 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है, उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए 5% 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें वहां, बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
0: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरे पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डेलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डेलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन

0: आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो AI के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। AI दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से AI की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम AI की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है, तो AI के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि AI में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है ज्यादातर, तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, आज जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से AI टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे

0: में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
1: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग्स टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहे कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को कटौते रहें।
0: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
0: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नाटक।
6: प्रस्तुत है R.K. जायसवाल का लिखा नाटक एक शक झूठ हजार। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल।

0: आ गए, ये वक्त है घर आने का।
1: क्यों, ऐसी भी कोई बहुत देरी तो नहीं हुई है?
0: 8 बज रहे हैं। पूछ सकती हूँ तुम्हारा ऑफिस कितने बजे छूटता है?
1: अरे मैं कोई ईमेल नहीं हूँ जो छूटते ही पहुंच जाऊंगा।
0: हाँ हाँ, ईमेल नहीं हो पर मेल हो, यही तो डर है।
1: अरे ये क्या अनशन बक रही हो?
0: अनशन? तुम क्या जानो मुझ पर क्या बीतती है। ऊपर से तुम्हारा ऑफिस स्टाफ तो ऐसे ऐसे रखते हैं जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए छाट छाट कर लाए हो।
1: दीपा दीपा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम किसी मिस इंडिया से कम हो क्या?
0: अब बनाओ मत, मैं पल पल मरती हूँ।
1: अरे पागल हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ?
0: एक मिनट, इधर आना तो जरा।
1: वो क्यों?
0: ये तुम्हारी शर्ट पे ये दाग कैसा?
1: कौन सा?
0: ये बाह पर नीचे।
1: अरे ये आइसक्रीम गिर गई थी।
0: ओ, तो आइसक्रीम खाने गए थे इसीलिए?
1: हाँ, रास्ते में जरा मन कर गया था।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी खुशबूदार आइसक्रीम रही होगी, है ना?
1: हाँ, अरे जाने कैसे कैसे तो फ्लेवर आजकल डालते हैं।
0: बड़ा ही फीमेल फ्लेवर दिखता है ये तो।
1: तुम औरतों की ना यही तो प्रॉब्लम है कि हर बात को बस शक की नजर से देखती हो।
0: शक की नजर से नहीं डैमिट, कंफर्म कह रही हूँ, तुम किसी औरत के साथ थे।
1: क्या
0: ऐसे भोले ना बनो, ये लेडीज परफ्यूम की महक है, कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम का फ्लेवर नहीं है। स्टूपिड समझ रखा है मुझे। हाँ नहीं तो

0: इस फाइल पे एक नजर तो डाल लेना डब्बू, न्यू रिक्रूट्स की लिस्ट है। हेलो, कहाँ खोए हो?
1: कहीं नहीं।
0: कुछ सोच रहे हो डियर?
1: हाँ, सोच तो रहा हूँ। क्या परफ्यूम का भी कोई जेंडर होता है?
0: मतलब?
1: अरे मतलब ये कि कल दीपा बोल रही थी।
0: अच्छा, अब समझी। तो बीवी तुम पर शक कर रही थी, क्यों?
1: अरे बाप रे, कितनी तेज नाक होती है तुम औरतों की। अरे वो जो आइसक्रीम तुमने अपनी हैंकी से पहुंची थी ना, उसकी महक सूंघ गई वो।
0: गधे हो तुम, झूठ बोलते ही क्यों हो? अरे इसमें कौन सा गुनाह कर दिया था तुमने जो छुपाए फिरते हो?
1: अरे गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव तुम नहीं जानती। पता नहीं क्यों बहुत इनसिक्योर फील करती है वो।
0: ऐसा क्यों?
1: गॉड नोज, शादी के पहले ऐसा नहीं था।
0: लव मैरिज हुई थी ना तुम दोनों की?
1: हाँ, फिर भी
0: फूलिश लेती है, समझती ही नहीं। जितना बांधो आदमी उतना भागता है। कहो तो मैं किसी दिन
1: नाना, अब भूल के भी नहीं, तुम्हारा ये सुंदर चेहरा देख लेगी तो सुसाइड कर लेगी।
0: इतनी कातिल हूं मैं, तुम पे तो कभी असर देखा ही नहीं।
1: देखोगी भी नहीं, काश ये बात दीपा समझ जाए।

0: सारे मर्द ऐसे ही होते हैं रे बाबा, सब के सब लूज कैरेक्टर, जरा सी ढील दी नहीं किए।
1: अरे अब मैं क्या करूं मिन्नी, कुछ समझ में ही नहीं आता, टेंशन के मारे मेरा तो सर फटता रहता है।
0: नजर रखा कर उस पर, नहीं तो पता चला कि तू बाहर और वो।
1: अरे
0: वैशाली का पता है ना तुझे?
1: वैशाली कौन? अच्छा अच्छा, वो जो ट्रांसफर लेके मुंबई गई है।
0: हाँ वही, सब सोचते हैं कि वो, मगर अंदर की बात तो मैं ही जानती हूँ।
1: अंदर की कौन सी बात?
0: अरे उसका जो हस्बैंड था ना, वो मुंबई में था।
1: हाँ
0: पता चला वहां दूसरी कर ली उसने।
1: अरे
0: उसी के मारे बेचारी वैशाली को वहां ट्रांसफर लेना पड़ा, नहीं तो कौन जाए वहां, जिंदगी बिल्कुल मशीन हो जाती है।
1: फिर
0: क्या, अभी तक लफड़ा चल रहा है, एक बार कनेक्शन हो जाए तो छूटता थोड़ी है।
1: हाय राम, मेरा तो सर दुख रहा है मिन्नी।
0: अब देख, सिर दुखाने से तो काम नहीं चलने वाला, चौकसी रख चौकसी। पतंग की डोर तो छूटने पे पकड़ सकती है, मगर आदमी की नो चांस।
1: हाय राम, अब मैं क्या करूं, अब तो डब्बू झूठ भी बोलने लगे हैं।
0: अरे झूठ तो सारे ही मर्द बोलते हैं बाबा, अलर्ट तो बीवियों को ही रहना पड़ता है ना। तू तो पल पल का हिसाब मांगा कर, कहां गया, किससे मिला, इतनी देर कैसे हुई, सब।

0: इससे क्या होगा, झूठ बोल देगा, कोई नई कहानी गढ़ देगा फिर से।
1: बिल्कुल ही बेवकूफ है तू, पुलिस कैसे सच उगलवाती है?
0: मार मार के
1: मार के नहीं, वो जमाना गया, एक ही सवाल को पुलिस 10 तरीके से पूछती है कि आदमी फंसता ही चला जाता है।
0: ओहो, किसी पुलिस वाले से तेरा
1: मैं तुझे रास्ता बता रही हूँ और तू है कि चल उठ, लंच अवर फिनिश्ड।
0: हाँ, चल चल।

0: ओ टप्पू, कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम हो, मैं हूं और नदी की ये धार। कितने दिनों बाद आज हम फिर इस तरह बाहर निकले हैं।
1: सच? तुम खुश हो ना दीपा? ऐसे ही खुश रहा करो, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है।
0: याद है टप्पू, कॉलेज के दिनों में जब हम ग्वालियर फोर्ट गए थे, तब मेरा हाथ थामकर कितने रोमांटिक मूड में तुम बोले थे, दीपा तुम मेरी मृगनयनी हो।
1: सब याद है। और ये भी याद है कि ये सुनकर कैसे तुम छुई मुई सी शर्मा गई थी।
0: वो दिन मैं कभी नहीं भूलती डब्बू, तरस गई मैं वैसी ही बातें फिर सुनने के लिए। और तुम हो कि
1: तो लो, आज ही कह देता हूं, दीपा तुम मेरी मृगनयनी हो, रूपमती हो, हीर हो, लैला हो। एक मिनट।
0: सत्यानाश हो, अच्छे भले रोमांटिक माहौल का कबाड़ा कर दिया। तुम अपने मोबाइल को बंद नहीं रख सकते?
1: एक मिनट। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी आया।
0: अभी आया? मतलब कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था?
1: कुछ अर्जेंसी आ गई।
0: अरे तो कह देते, तुम छुट्टी पर हो।
1: ऐसे नहीं होता दीपा, तुम जानती हो बहुत निभा के नौकरी करनी पड़ती है।
0: लेकिन फोन किसने किया था?
1: था एक ऑफिस का।
0: था कि थी?
1: ओफो, फिर शुरू हो गई तुम्हारी जासूसी। चलो मैं तुम्हें चौराहे पर छोड़ दूंगा, वहां से तुम ऑटो से निकल जाना।
0: नहीं, पहले मुझे ये बताओ किसने बुलाया है तुम्हें।
1: दिमाग खराब मत करो दीपा, वहां अर्जेंसी है और यहाँ तुम मेरा इंटरोगेशन कर रही हो। मैं जा रहा हूं।
0: नहीं नहीं जाओगे कहीं भी, पहले अपना फोन दिखाओ। दिखाओ मुझे अपना फोन।
1: अरे
0: कौन है ये? एक मिनट छोड़ो। ये नाम की जगह कोड डाल रखे हो। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा।
2: हाँ बोलो टप्पू, अभी तक निकले ही नहीं।
0: ओह, तो ये है तुम्हारा था। क्यों?
1: प्लीज दीपा, जाने दो मुझे, वहां मेरा
0: इंतजार चल रहा है। यही ना, तुम्हें मेरी कसम है, और आज अगर तुम, मैं नदी में कूद के चांद दे दूंगी, फिर उड़ाना गुलछर्रे उसके साथ आराम से।

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है डब्बू, क्या सोच रहे हो?
1: अरे हाँ, चाय ठंडी।
0: मिस्टर, आजकल आप रहते कहाँ हैं? इज एवरीथिंग ओके?
1: अब तुमसे क्या छुपाना, वही दीपा का चक्कर, दिन ब दिन वो और शक्की होती जा रही है।
0: अगर मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है तो
1: ऐसा नहीं है भावना, वो है ही पजेसिव। अरे किस किस से नाता तोड़ूंगा? अगर समाज में रहना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी औरत से बात ही ना करूं।
0: कह तो रही हूं कि एक दिन मुझे उसके पास ले चलो, मगर तुम सुनते ही नहीं।
1: पागल हो? फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के तो ऐसे भड़कती है, साक्षात देख लेगी तब तो कयामत ही आ जाएगी।
0: फिर
1: पता नहीं, अब तो घर जाते भी डर लगता है। जितना वक्त तुम्हारे साथ बीतता है बस वही सुकून देता है।
0: सच?
1: मेरा वो मतलब नहीं है भावना, एज ए फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड पाता हूं मैं तुम में, जिससे अपना दुख दर्द मैं बांट सकता हूं। तुम ही बताओ, तुम्हें मैं कैसे खो दूं?

0: कुछ तो शर्म करो, शर्म।
1: अरे फ्रेंड है मेरी, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो तुम?
0: क्या गलत कर दिया? अरे

0: लानत है ऐसी जिंदगी पर।
1: ये क्या देवदास की तरह चले आ रहे हो? घर में खाना पानी नहीं मिला क्या?
0: कैसा घर? मैं होटल से आ रहा हूं।
1: क्या, होटल से? मतलब रात में तुम लड़कर?
0: हाँ, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था।
1: तो होटल जाने की क्या जरूरत थी? मेरा घर नहीं था क्या?
0: कैसी बातें कर रही हो भावना, मैं रात में तुम्हारे घर रुकता? होश में तो हो तुम?
1: जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्यों, फिर और भी कमरे हैं मेरे घर में।
0: मालूम है मुझे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा।
1: एक तुम हो और एक वो, मुझे तो तरस आता है उसकी अकल पर।
0: बुरी नहीं है वो भावना, पर पता नहीं क्यों बहुत इनसिक्योर फील करती है।
1: वही तो, फ्लर्ट टाइप के होते तुम तो समझ में भी आता, मेंटली सिक है।
0: ना ना, ऐसा ना कहो, बड़ी मुश्किल से मिले हैं हम ना, शायद इसलिए।
1: बड़ी रुकावटें थी ना तुम लोगों की शादी में?
0: बहुत ज्यादा, दोनों की ही फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, पर मैं तो लड़का था, उसने बहुत मुश्किल उठाई।
1: यही तो, इतनी मुश्किल से जो चीज मिली है उसकी कद्र ही नहीं उसे। सर डब्बू नहीं आया आज, मोबाइल भी ऑफ आ रहा है उसका।
2: बुरी खबर है भावना।
1: क्या, सब ठीक तो है ना सर?
2: उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है।
1: पुलिस कंप्लेंट? ओ नो, अभी वो कहाँ है?
2: थाने में बैठा है, शायद उसका बयान ले रहे हैं।
1: मैं भी जाती हूँ सर।
2: कहाँ, थाने?
1: यस सर।
2: मगर तुम क्या कर लोगी वहाँ?
1: मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जा रही हूँ।
2: ओके, टेक केयर।
1: जी सर।
0: सर, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई डाउरी की डिमांड नहीं की है, और सर ये प्रताड़ित करने वाली बात, ये तो बिल्कुल ही झूठ है।
3: यहाँ सब सच ही बोलते हैं जी, और यही कहते हैं कि बेकसूर हैं।
0: लेकिन मैं इनोसेंट हूँ सर, थोड़े बहुत झगड़े किस हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं होते।
3: अच्छा, कैसे साबित करेंगे अपनी इनोसेंस?
0: अरे साबित वो करें कि मैं एक्यूज्ड हूँ, इतना कानून तो मैं भी समझता हूँ।
3: ये थाना है बेटा, सारा कानून निकल जाएगा। पता भी है वुमेन मैटर्स में गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है।
0: तो क्या मतलब है आपका कि किसी बेकसूर को जेल में ठूंस दीजिए? अरे जांच कीजिए, जुर्म साबित हो तो चढ़ा दीजिए फांसी।
3: अरे मैं कौन होता हूँ फांसी चढ़ाने वाला, क्या सजा देनी है क्या नहीं ये कोर्ट जाने। पुलिस का काम है एविडेंस कलेक्ट करना और चार्जशीट दाखिल करना।
0: मतलब कि चार्जशीट बनानी ही है, ये आपने पहले से ही तय कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन तो बस दिखावा है।
3: ए मिस्टर, पुलिस को उसका काम मत समझाइए।
1: डब्बू, कैसे हो तुम?
3: ये मैडम कौन है?
1: मैं बताती हूँ, मैं इनकी कलीग हूँ।
3: ओ अच्छा, तो पैरवी में आई है इनकी?
1: जो चाहे समझ लीजिए।
0: तुम्हें यहाँ नहीं आना था भावना।
1: क्यों, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम पर आफत आएगी और भावना नहीं होगी?
3: लगता है कंप्लेंट फाल्स नहीं है।
1: आप पुलिस हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ तो भी बोल दें आप।
3: भाई मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, बोल तो आपकी बॉडी लैंग्वेज रही है।
0: भावना, भावना तुम जाओ यहाँ से।
1: नहीं मैं नहीं जाती, जानू तो सही कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है।
3: अरे अब मेरा मुंह मत खुलवाओ जी, ऐसे केसेस में क्रुएलिटी का रीजन ज्यादातर कोई वुमन ही होती है। जिंदगी बीत गई मेरी ये सब देखते देखते।
0: प्लीज जाओ भावना, जाओ तुम, तुम्हें मेरी कसम।
4: मिस भावना, मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है।
1: तो फिर?
4: देखिए डरने की जरूरत नहीं, 498A के केसेस में पुलिस सफिशिएंट एविडेंस के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती।
1: तो फिर वो उसे थाने में रोक के कैसे रख सकते हैं सर?
4: टेक्निकल पॉइंट है भाई, पूछताछ के लिए तो पुलिस किसी को भी थाने बुला सकती।
1: वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उसका जुर्म साबित।
4: अरे अरे अरे, आप बिल्कुल नहीं समझती भाई। ये बताइए, शेर अगर

0: नॉर्मल बातचीत भी करेगा तो कैसे करेगा?
1: मतलब?
0: अरे मतलब ये कि पुलिस की स्टाइल ही कुछ ऐसी है, अब क्या किया जाए। क्या छोड़िए इन बातों को, हमें उसे इनोसेंट साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं
1: नहीं
0: तो।
1: तो क्या, अभी अभी तो आपने कहा कि
0: अरे भाई कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर सकती। ग्राउंड्स हैं कुछ जिनकी बिना पर पुलिस अरेस्ट कर भी सकती है,
1: जैसे
0: जैसे कि पुलिस ऑफिसर को लगे कि एक्यूज एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, विटनेस को धमकी दे सकता है।
1: विटनेस।
0: हाँ जी विटनेस, कोई मिनी मैडम है इसमें, उसी ने दीपा के लगाए एलिगेशंस को अप्रूव किया है।
1: मिनी, वो कैसे?
0: भाई ये लीगल बातें हैं, इनमें ना उलझिए आप। मुद्दा ये है कि विटनेस अगर शिकायतकर्ता की बात को अप्रूव करता है तो कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है।
1: ओफो, साफ साफ बताइए कि अब हमें करना क्या है।
0: भाई अब बात विटनेस पर आ गई है, वो जिधर घूम जाए केस उसके पक्ष में। और हाँ इससे भी बढ़कर शिकायतकर्ता पर, अरे
1: मतलब?
0: मतलब ये कि पुलिस ने अभी एफआईआर लिया नहीं है, अभी मामले को जांच में रखा है, और इस स्टेज पर शिकायतकर्ता अगर विड्रॉ कर ले तो समझो केस खत्म।
1: ओह, नाउ आई गॉट इट।

0: मैं आए कब?
1: आ गई तुम। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आप।
0: एक्सक्यूज मी, जहां तक मुझे याद आता है हम इसके पहले कभी नहीं मिले हैं।
1: तो क्या हुआ, जो कांटा दिल में कड़ा हो उसे पहचानने में देर थोड़ी लगती है।
0: छोड़ो इन बातों को, मुद्दे की बात करते हैं।
1: मुद्दे की बात? बोलो ना, मुद्दे की बात पर ही हमेशा तुम स्ट्राइक करती हो। तभी तो सोच समझ कर।
0: दीपा, सॉरी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती।
1: अरे लड़ लो, लड़ो ना जी भर कर, हमारी जंग तो अब छिड़ चुकी है।
0: दीपा, तुम्हें परेशानी मुझसे है और सजा उस बेकसूर को दे रही हो।
1: बेकसूर? तुम तो कहोगी ही उसे बेकसूर। मैंने भुगता है, डैमिट। अंगारों पे लोट लोट कर जी हूं मैं। देखना चाहोगी फफोले मेरे दिल पे है।
0: मुझे तुमसे सिंपैथी है दीपा, लेकिन मेरा विश्वास करो, डब्बू बेकसूर है। हाँ, मैं कसूरवार हूँ, ये मानती हूँ।
1: क्या कहा, तुम खुद को कसूरवार मानती हो?
0: हाँ मानती हूँ मैं। मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, लेकिन ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, उसने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा।
1: तो फिर क्यों हमेशा वो तुम्हारी कंपनी में रहता है? क्यों तुम्हारी बातें मानता है? क्यों तुम्हारे संबंध में बार बार झूठ बोला उसने? है कोई जवाब तुम्हारे पास?
0: जवाब है, सब तुम्हारे बचपने से हुआ। प्यार में इस कदर इनसिक्योर फील करती थी तुम कि तुम्हारा शक सारी हदें ही तोड़ गया।
1: बेवजह नहीं था मेरा शक।
0: बेवजह ही था, जिसकी जड़ में थी तुम्हारी पजेसिवनेस, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसके लिए कैद बन गई। घर में तुम उससे दिन रात झगड़ा करती। ऐसे में आदमी कहां जाए? वहीं जाएगा जहां उसे हमदर्द मिले, अपनापन मिले।
1: तो तुम यहां मुझे नीचा दिखाने आई हो?
0: नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि अपने डब्बू को बचा लो, जिसे पाने के लिए तुम दुनिया से टकराई थी।
1: किसके लिए? तुम्हारे?
0: नहीं, मेरा तो वो कभी था ही नहीं।
1: झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। क्या उस रात घर से भागकर डब्बू तुम्हारे पास नहीं गया था? पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारी है, डैमिट, और तुम कहती हो कि?
0: क्या उल जलूल बक रही हो, उस रात होटल में था वो भी अकेला।
1: कैसे मान लूं मैं? है कोई प्रूफ तुम्हारे पास?
0: प्रूफ चाहिए? जाके होटल का रजिस्टर चेक कर लो, नहीं तो वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। फिर भी विश्वास ना आए तो पुलिस को बता दो, वो तो सच झूठ पता कर ही लेंगे, क्यों है ना?
1: मतलब सचमुच उस रात डब्बू?
0: ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ दीपा, प्रूफ तुम खुद ले सकती हो। जो सच है वो सच है।
1: ओह नो।
0: सोचो दीपा, दिल से नहीं दिमाग से। अगर वो गलत होता तो उस रात क्या वो होटल जाता? अरे वो सीधा मेरे पास आता।
1: ओह गॉड, कहा तो उसने यही था, पर मैं क्या करती, कैसे?

0: डैमेट, इतना झूठ जो बोल चुका था।
1: यस
0: सर, डब्बू कहाँ है?
1: क्यों, खाना लाइए श्रीमान के लिए, हमने खिला दिया है।
0: मतलब?
1: मतलब कि अभी वो हवालात में आराम कर रहे हैं।
0: उन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ।
1: आप लोगों ने पुलिस को खाला का घर समझ रखा है क्या? कल तक तो कार्यवाही करने के लिए प्रेशर डाल रही थी और आज?
0: सॉरी सर, कुछ गलत फहमी हो गई थी।
1: गलत फहमी? सॉरी, अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है।
0: मैं अपनी कंप्लेंट वापस तो ले रही हूँ ना सर, फिर क्या प्रॉब्लम है?
1: सॉरी दीपा जी, अब बहुत देर हो चुकी है, फॉर्मल अरेस्ट हो चुकी है, केस डायरी लिखी जा चुकी है और रोज नामचे में भी एंट्री हो चुकी है। ये रही अरेस्ट की इंटीमेशन।
0: ओह नो सर, इतनी जल्दी सब कुछ?
1: भाई आप लोगों का भी जवाब नहीं, कार्यवाही में देरी हो तो चिल्लाती हैं, जल्दी कर दी तो उस पर भी एतराज।
0: कुछ तो हो ही सकता होगा सर, अभी मामला आप ही के पास है।
1: मेरे पास है लेकिन मेरे हाथ में नहीं, अब जो होगा कोर्ट में होगा।
0: कुछ नहीं सर।
1: कुछ भी नहीं
0: सर, हम उसे एक बार मिल तो सकते हैं ना सर?
1: हाँ मिल लीजिए, वो रहे आपके पति देव।
0: मुझे माफ कर दो डब्बू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
2: भूल? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, घी के दिए जलाने चाहिए कि तुमने अपने कैरेक्टरलेस हस्बैंड को पनिश करा दिया।
0: मैं सच में शर्मिंदा हूँ डब्बू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? उस रात कितना रोका था मैंने तुम्हें कि डब्बू मत जाओ मत जाओ, और तुम होगी
2: तो ठीक है ना, उसकी सजा भुगत रहा हूँ, अब और क्या चाहती हो?
0: जाने दो डब्बू, इससे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है।
2: गलती रियलाइज हो गई? अरे मुझ पे जो बीती है वो खत्म हो जाएगी
0: डब्बू। गलती अकेले उसकी नहीं, तुम्हारी भी तो है। क्यों लगातार झूठ बोलते थे तुम उससे?
2: हाँ झूठ बोला था, मानता हूं कि झूठ बोला था, मगर क्यों? इसके शक्कीपन के कारण। 1% भी अगर इसने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं झूठ बोलता ही क्यों?
0: बिलीव मी डब्बू, बिलीव मी, मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ। इसी वजह से मुझ में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती गई, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम किसी और को देखो भी।
3: ठीक है दीपा, लेकिन तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता है। आखिर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा तो होना ही चाहिए था ना।
0: ठीक कहती हो तुम भावना, डैम इट, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी डब्बू।
2: दीपा
0: सॉरी
2: दीपा।

0: एक शक झूठ हजार। अभी आप आर के जायसवाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। डब्बू नजीर कुरैशी।
1: पागल हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ?
0: दीपा स्वस्तिका चक्रवर्ती।
2: शक की नजर से नहीं डैमिट, कंफर्म कह रही हूँ, तुम किसी औरत के साथ थे।
0: भावना दिव्या पवार।
3: इतनी कातिल हूँ मैं, तुम पे तो कभी असर देखा ही नहीं।
0: मिन्नी कविता इसरानी।
4: चौकसी रख चौकसी। पतंग की डोर तो छूटने पे पकड़ सकती है, मगर आदमी की नो चांस।
0: मैनेजर प्रदीप नेमा।
5: उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है।
0: थानेदार सुभाष सक्सेना।
6: ये थाना है बेटा, सारा कानून निकल जाएगा।
0: और वकील अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी।
7: देखिए डरने की जरूरत नहीं, 498A के केसेस में पुलिस सफिशिएंट एविडेंस के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती।
0: इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
8: अभी आपने नाटक सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए राग दरबारी कान्हड़ा में ध्रुपद गायन। कलाकार हैं डागर बंधु।

0: अभी आपने डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन सुना। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, Deputy Chairman adjourned.